ये विविध भारती है। हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए तीन नाम और तीन मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवनहंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा।

0: इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

ये विविध भारती है, झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में यानी दिन के ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 315। 6:45 पर सुनिएगा संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आपको सुनवाएंगे गायक और कलाकार हैं डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। 7:00 सुनाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की। 8:15 पर सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की 46वीं कड़ी। 8:30 पर सुनिएगा चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री शबाना आजमी पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। श्रोताओं इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। दिन में 10:00 पिटारा लाएगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। दिन में 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग। 12:00 समाचारों का होगा। 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल। 1:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। 2:00 वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। भाग 46 आज आपको सुनवाएंगे। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे। 3:00 आप सुनेंगे हेलो सहेली कार्यक्रम और शाम 4:00 पिटारा में गीतों भरी कहानी सुनिएगा रिहाई, लेखिका अलका सिन्हा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 5:00 आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। 7:00 सुनिएगा

कार्यक्रम जयमाला। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे अनमोल यादें। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का 11वां भाग आपको सुनाएंगे प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनेगा झलकी बीवी ब्यूटी क्वीन। लेखक शरद सिंह और निर्देशन अजीमुद्दीन का है। रात 8:15 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक। 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री शबाना आजमी पर। 10 बजे सुनिएगा छाया गीत। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अपने बल का आभास देने के लिए रावण की सभा में अंगद ने पृथ्वी पर जो पैर रोपा तो मेघनाथ समेत अनेक योद्धाओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु उसे हिला तक नहीं सके। ये देख स्वयं रावण उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो अंगद का पैर पकड़ने लगा, अंगद बोल पड़े, अरे मूर्ख, मेरा चरण पकड़ने में तेरा कल्याण नहीं, जाकर श्री राम के चरण पकड़। पल भर में रावण के दंभपूर्ण मुखमंडल से कांति विलुप्त हो गई। सकुचाकर वो सिंहासन पर वापस जा बैठा। उसका मुख वैसे ही निस्तेज हो गया जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। पार्वती को ये वृत्तांत सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन प्रभु के भौहों के संकेत मात्र से विश्व की रचना और विनाश होता है, जो एक तिनके को वज्र के समान कठोर और वज्र को तिनके के समान नगण्य बना देते हैं, उनके दूत के प्रण और निश्चय को भला कौन डिगा सकता है। अंगद ने एक बार फिर नीतिपूर्ण वचन कहकर रावण को सद्बुद्धि देनी चाही, किंतु उसका कोई प्रभाव न होता देख रणभूमि में उसका वध करने की धमकी देकर श्री राम के शिविर में वापस लौट गए। रात्रि में मंदोदरी ने रावण को फिर समझाने का प्रयास किया। जो श्री राम के छोटे भाई द्वारा खींची गई एक रेखा तक नहीं लांग सका, वो स्वयं जगदीश्वर से किस प्रकार पार पा सकेगा।

0: आजकल इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीत की श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। उदाहरणों सहित इसे प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। आमिर खान की गायकी में चैनदारी और विलंबित बढ़त का मौलिक रूप अत्यंत लुभावना है। ख्याल चाहे विलंबित हो या द्रुत, चिंतन का क्रम व चैनदारी बराबर बनी रहती थी। इसी विशेषता ने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया। आमिर खान साहब को यह प्रेरणा जहां बहरे अब्दुल वहीद खान से मिली, वहीं कूट तानों व मेरुखंड की प्रेरणा भिंडी बाजार वाले अमान अली खान साहब अमर से प्राप्त हुई। देवास के प्रोफेसर अमानत खान साहब तान कहते कहते सहसा एक स्वर पर ठहर के पुनः तान कहने लग जाते थे। यह उनकी अद्वितीय विशेषता थी। यह अंग आमिर खान साहब को बहुत ही पसंद आया। उन्होंने देवास के रजब अली खान के कूट तानों के साथ अवरोही के तानों के साथ गायकी के अनेक अंग आत्मसात किए। जरब और जवारी बहरे अब्दुल वहीद खान की उन्हें पसंद आई। साथ में छूट कह जाना आमिर खान साहब को बहुत भाया। आमिर खान साहब बचपन में उस्ताद बाबू खान साहब बीनकार के साथ हमारे ग्रैंडफादर गोस्वामी श्री कृष्ण राय जी महाराज बच्चू बाबा के यहाँ आया करते थे। यहाँ उनकी सीट थी, इसलिए उन्होंने वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र गोसाई जी के नाम पर एक बंदिश भी बनाई जिसमें मध्यलय में ख्याल का अंदाज मालूम होता है। तो अब मैं वो बंदिश आपको गाकर सुना रहा हूँ।

केवल गायक होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु अच्छे रचनाकार होने की आवश्यकता भी है। साथ साथ में हर अंग को गायन में यथोचित स्थान देना चाहिए। पहले गुरुजन शिष्य की साधना और उसकी गायकी के हर छोर हर पहलू पर ध्यान देते थे। गायकी के साथ साथ उसे बंदिशों को कहने का अंदाज सिखाते थे, बंदिश कैसे बनाई जाए इसकी शिक्षा देते थे। इन सब बातों के लिए पेशेंस चाहिए। उस्ताद अमीर खान साहब बहुत अच्छे रचनाकार थे। वे सुररंग तखल्लुस मुद्रा या उपनाम से गाते थे। उनकी एक बड़ी ही सुंदर रचना जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ उनकी पत्नी का इसमें योगदान लिए हुए है, तो प्रस्तुत है राग यमन कल्याण में वो बंदिश जो मैं आपको गाकर सुना रहा हूँ, जिसमें गायकी के अनेक अंग हैं, जैसे बल, पेंच, गमकतान, जरब, जरब से गमकतान, छूट, फिरत, कंपित, अंदोल और मेरुखंड आदि का उज्ज्वल उदाहरण लिए हुए हैं।

0: संगीत की श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं आप संगीत सरिता कार्यक्रम में सुन रहे थे। इसके प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र से 102.8 FM पर। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे आकाशवाणी पुणे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचारों के बाद।

0: लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज़ों में अलबेला फिल्म का ये गीत था। राजेंद्र कृष्ण की रचना आपने सुनी, श्री रामचंद्र का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम श्रोताओ यहीं संपन्न होता है।
1: देखो टर्मरिक

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
0: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
1: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
2: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक के तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: मेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में देवता फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार की रचना थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, गुलजार के बोल खय्याम की तर्ज।

फकीरा फिल्म का दो गाना था किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। युगल गीतों का कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: मजरू सुल्तान परी की रचना, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म परवरिश का गीत आपने सुना।
1: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था, उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है।

फिल्म अवतार का ये गीत आप सुन रहे हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है। हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्य, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
6: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
7: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
6: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
8: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
6: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
0: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
9: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
11: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमरीकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमरीका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईटी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
13: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 46वीं कड़ी।

0: 1942 के आंदोलन में देश में कई जगहों पर प्रति सरकारें स्थापित की गईं। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, एसएम जोशी, जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर आंदोलन को आगे जारी रखा। गुप्त रेडियो केंद्र शुरू किए गए। क्रांति सिंह नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकारें स्थापित की गईं। अब किसी भी परिस्थिति में अंत तक यह आंदोलन जारी रखना ही है। आंदोलनकारियों की इस जिद के कारण ब्रिटिश राज सत्ता को एक के बाद एक झटके लग रहे थे, परंतु जब राज सत्ता की रीढ़ ही सेना और राज सत्ता के विरुद्ध चली जाती है, तब सारे समीकरण बदल जाते हैं। आजाद हिंद सेना को आदर्श मानकर ब्रिटिश फौज के नौसेना और वायुसेना के भारतीय अधिकारियों ने हड़ताल का आह्वान किया। मुंबई बंदरगाह में खड़ी तलवार नामक युद्ध पोत पर से यूनियन जैक उतार दिया गया। नौसेना के अधिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ दिया। कई महत्वपूर्ण शहरों में वायुसेना के अधिकारी हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजों द्वारा कड़ी कार्रवाई की धमकी दिए जाने के बाद भी उन्होंने हड़ताल वापस नहीं ली। नाविक दल के इस संघर्ष में वंदे मातरम शब्द को युद्ध घोष का स्थान प्राप्त था। जिन भारतीय सैनिकों के बल पर अंग्रेजों ने राज चलाया था, उन्हीं भारतीय सैनिकों के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सत्ता को अंतिम और सबसे बड़ा झटका लगा।
1: दूसरे विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट में फंसा इंग्लैंड भारत में इन उग्र आंदोलनों के कारण पूरी तरह घिर गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने का समय बिल्कुल निकट आ गया, पर जाते जाते अंग्रेजों ने कुछ साल पहले जो फूट डालने की राजनीति की थी, उसके कटु परिणाम अब दिखने लगे थे। बैरिस्टर जिन्ना के दुराग्रह के कारण मुस्लिम लीग और अन्य जातिवादी संगठनों की हिंसक कार्रवाइयों में भारत को खंडित स्वरूप में ही स्वतंत्रता मिलेगी, ये लगभग निश्चित हो गया था। बेशक 150 साल की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने का आनंद सबसे बड़ा था। 1875 में बंकिम चंद्र ने भारत माता को वंदे मातरम कहकर जो पुकार लगाई थी, वो आज इतने वर्षों बाद फलदायी हो रही थी। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ऐसे नारे लगाते हुए बलिदान देने वाले, शहादत को गले लगाने वाले युवाओं का या वंदे मातरम कहते हुए असहनीय अत्याचार सहने वाले सत्याग्रहियों का स्वतंत्र भारत का सपना आज साकार हो रहा था।

0: कुल मिलाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अधिकांश घटनाएं वंदे मातरम की साक्षी में ही घटी हैं। वंदे मातरम, इन शब्दों के बिना मानो इस आंदोलन की किसी भी हलचल को पूर्णता मिलना असंभव था। संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम के इस तेजस्वी मंत्र का संबल मिला। मैं माता को वंदन करता हूं, इतना सरल अर्थ वाले इन शब्दों से अंग्रेजों को इतना डर क्यों लगता था? उन पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते थे? उन शब्दों का उच्चारण करने वालों पर लाठी डंडों के साथ बंदूक की गोलियां भी क्यों चलाई जाती थीं? अंग्रेजी राज सत्ता के मन में इतना भय पैदा करने वाली ऐसी कौन सी भावना वंदे मातरम शब्द में छिपी हुई थी?
1: वंदे मातरम इस शब्द में है धधकती राष्ट्र भावना, इन शब्दों में है मातृभूमि के प्रति ज्वलंत निष्ठा, इन शब्दों में है मातृभूमि के चरणों में लीन होने की शरण भावना, इन शब्दों में है खड्ग की शक्ति।
0: पंद्रह अगस्त 1947 को हमारी मातृभूमि पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। स्वतंत्रता की पहली किरण के साथ दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की आवाज में वंदे मातरम पूरे देश भर में सुनाया जा रहा था और उसी समय मुंबई आकाशवाणी केंद्र से किराना घराने की प्रतिभावान गायिका का दिव्य स्वर गूंज रहा था। गान हीरा हीराबाई बड़ोदेकर अपने मधुर स्वरों में तिलक कामोद राग में स्वयं तैयार की हुई रचना में वंदे मातरम प्रस्तुत कर रही थी।

0: 15 अगस्त 1947 क्रांतिकारी अरविंद घोष अब योगी श्री अरविंद बन चुके थे। आज उनका जन्मदिन था। आज उनके 75वें जन्मदिवस पर उन्हें अपनी भारत माता के स्वतंत्र होने का सपना साकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1910 के बाद श्री अरविंद क्रांतिकारी कार्यों से योग मार्ग की ओर मुड़ गए थे। फिर भी वंदे मातरम के वे सच्चे अर्थों में प्रवर्तक थे। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा, पर उसका आशय, उसका महत्व, उसकी चिंगारी भारतीय जनता के मन में पहली बार जगाई होगी तो वो श्री अरविंद ने। वंदे मातरम के दो अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किए ही थे। उसके साथ ही बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने शुरू किया, परंतु कारावास के कारण उसमें बाधा आ गई और वो अनुवाद उनके क्रांतिकारी भाई बारिंद्र नाथ घोष ने पूरा किया। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम और आनंद मठ की प्रेरणा से श्री अरविंद ने भवानी मंदिर की परिकल्पना की थी। भवानी मंदिर, ये संकल्पना उन्होंने लेख के रूप में युवाओं के सामने रखी और वो आध्यात्मनिष्ठ राष्ट्रवादियों के लिए गीता बन गई। श्री अरविंद ने भवानी भारती इस लेख में राष्ट्र के विषय में जो संकल्पित किया उसे स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं,
1: ये देश जड़ भू प्रदेश नहीं है, वो भगवती शक्ति की प्रतिमा है। पहले की महिषासुर मर्दिनी आज भारत भवानी बन गई है। उसके लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले उसके पुत्रों को उसका अभिषेक करने के लिए आगे आना चाहिए। भवानी मंदिर बनाने के लिए ईंट पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीयता की भक्ति भावना से आकार लेने वाला वो मानस मंदिर होगा।
0: भवानी मंदिर की उनकी परिकल्पना यदि प्रत्यक्ष रूप

में साकार हुई होती तो भारतीय सशस्त्र संघर्ष को एक संगठित स्वरूप प्राप्त हो जाता। बंकिम चंद्र के आनंद मठ उपन्यास में सन्यासियों की राष्ट्र भावना से समानता रखने वाला विन्यास इस लेख में है। भवानी मंदिर इस संकल्पना के पूरक के रूप में भवानी भारती नाम से श्री अरविंद ने संस्कृत भाषा में 99 श्लोक लिखकर आदिशक्ति से आर्त प्रार्थना की। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों के देवी महात्म्य में महिषासुर वध के रूपक को श्री अरविंद ने अंग्रेज रूपी असुर का कालिका माता के स्वरूप वाली भारत माता वध करती है ऐसी कल्पना करते हुए प्रस्तुत किया। इन 99 श्लोकों के अंत में समापन करते हुए अंतिम दो चरणों में वे भारत माता को संबोधित करते हुए कहते हैं।

इसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अनंत रूप धारण करने वाली प्रीति, दया, धैर्य, अदम्य शौर्य, श्रद्धा, तितिक्षा और विविध विद्याएं, ये सब तू ही है। हे आर्य, प्रसन्न हो और भारतीयों के हृदय में चिरकाल तक निवास कर। हे प्रचंड तेज पुंज प्रतिमा के समान देवी, अपनी शुभ्र कांति से सागरों और पर्वत शिखरों को प्रकाशित करती हुई स्थिर होकर प्रसन्नता पूर्वक जगत के कल्याण के लिए तू आर्य भूमि में अर्थात हमारे भारतवर्ष में चिरकाल तक निवास कर।

0: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम एक जय घोष, ये थी इस लघु रूपक श्रृंखला की 46वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 FM पर। सुबह के 8:30 होने वाले हैं। आकाशवाणी पुणे केंद्र से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय मराठी समाचार आप सुन सकेंगे बस कुछ ही पलों में।

अरिजीत सिंह की आवाज़ थी, राज शेखर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे, जसलीन रॉयल की तर्ज थी, हिचकी फिल्म का ये गीत आपने सुना। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

सतेंद्र त्रिपाठी की आवाज में योगेश की रचना आपने सुनी। प्रदीप कुंवर का संगीत था, अंग्रेजी में कहते हैं इस फिल्म का गीत आपने सुना। श्रोताओ, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज भारतीय सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्मदिन है। जन्मदिन की उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। शबाना आजमी मशहूर कवि और गीतकार कैफी आजमी और रंगमंच अभिनेत्री शौकत आजमी की सुपुत्री हैं। 1974 में शबाना आजमी ने श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से फिल्मों में शुरुआत की, जो आगे चलकर समानांतर सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री भी मानी गई। यथार्थवादी चित्रण को उन्होंने अपने अलग अलग किरदारों के जरिए सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने समय के मशहूर अभिनेताओं के साथ सफल फिल्में दी, जिनमें संजीव कुमार, नसीरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना भी थे। फिल्म जुनून, निशांत, मंदी, शतरंज के खिलाड़ी, मकड़ी, स्पर्श, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, फायर, गॉड मदर, ये उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में से हैं। शबाना आजमी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों को भी उन्होंने अपने नाम किया। 1998 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 2012 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। शबाना आजमी जाने माने पटकथा लेखक और शायर जावेद अख्तर की शरीके हयात हैं।

0: स्वप्निल एच दिघे की तर्ज थी। आप सुन रहे थे मनोज यादव का लिखा ये गीत, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म थी इश्क तेरा।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता,
1: मार उड़ा दी,
0: एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जम्बो जेट, जम्बो जेट, लंडन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट सोई।
0: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
6: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
0: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
6: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
0: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
8: लो, आदत बदलो।

0: डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं का।

शफ़ाकत अमानत अली की आवाज़ें आप सुन रहे थे फिल्म मुल्क में। शकील आज़मी की रचना थी, अनुराग साकिया की तर्ज थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म राजी में आपने सुना हर्षदीप कौर, विभा सराफ और शंकर महादेवन की आवाजें गुलजार के बोल थे, शंकर एहसान लॉय की तर्ज थी श्रोताओ, और यही थी आज के कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो इसी उम्मीद के साथ चित्रलोक कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
2: हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
3: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
4: आज के फनकार।

मैं कितनी बार बोला ना जी उजला कपड़ा पहनो ना को काला कपड़ा पहनो ना को उजला कपड़ा पहनो ना को मेरे दम से तू सुहागन सर से पांव तलक का सावन मेरे

0: पीनु नक्कु काला कपड़ा पीनु नक्कु मैं कितनी बार बोला ना जी उजला कपड़ा पीनु नक्कु काला कपड़ा पीनु नक्कु उजला कपड़ा पीनु नक्कु।
1: दोस्तों शबाना आजमी हिंदुस्तानी फिल्मी पर्दे की वो अभिनेत्री है जिसने अदाकारी के वो जौहर पेश किए हैं जिन्हें सिर्फ बेमिसाल ही कहा जाएगा। ये बात जग जाहिर है कि वो एक उम्दा शायर कैफिया आजमी और इप्टा की जानी मानी कलाकारा शौकत आजमी की बेटी है, मशहूर सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी की बहन और गीतकार शायर जावेद अख्तर की शरीक हयात है।

दोस्तों 1972 के आसपास FTII से शबाना आजमी ग्रेजुएट हुई और अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए ही एक्टिंग की दुनिया में जलवागर हुई। अब्बास साहब की एक फिल्म फासला में उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली भूमिका की, हालांकि ब्लेज फिल्म्स की पेशकश अंकुर पहले रिलीज हुई थी। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं शबाना आजमी द्वारा अभिनीत एक फिल्म अर्थ का ये बड़ा ही खूबसूरत गाना।

दोस्तों शबानाज भी उस दौर को बिलोंग करती हैं जब पैरेलल सिनेमा ने बुद्धिजीवियों के बीच पैठ बना ली थी। अगुवाई कर रहे थे द ग्रेट सत्यजीत राय, श्याम बेनेगल, महेश कौल, गिरीश कर्नाड, शंकर नाग जैसे और भी कई। इनके द्वारा बनाई गई फिल्में आर्ट फिल्में कहलाती थीं, जो क्लास के लिए बनती थीं, जो कि आधारित होती थी मास पर ही। उनके विषय मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देते थे। ऐसी ही एक फिल्म थी निशांत। इसमें भी बड़ी ही सशक्त भूमिका में थी शबाना आजमी।

दोस्तों, शबाना आजमी ने कई नामचीन फिल्मकारों के साथ काम किया है। उनमें से प्रमुख हैं श्याम बेनेगल की निशांत, जुनून, मंडी, सुष्मन और अंतरनाद। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया। सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी, मृणाल सेन के साथ खंडर, जेनेसिस और एक दिन अचानक, ये फिल्में उन्होंने की। सईद मिर्जा की फिल्म उन्होंने की थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। गौतम घोष की पार उन्होंने की थी। सही परांजपे की स्पर्श और दिशा, अपर्णा सेन की पिकनिक और सती, महेश भट्ट की अर्थ उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म अवतार के इस गाने के साथ।

दोस्तों, शबाना आज़मी द्वारा अभिनीत फिल्मों की एक फहरिस्त पर हम जब नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि किस किस्म की फिल्में उन्होंने की हैं। 1988 में मैडम सोजार्ट्स का, 1992 में आई थी सिटी ऑफ जॉय, 1993 में इन कस्टडी, 1993 में ही एक और फिल्म आई थी उनकी सन ऑफ द पिंक पैंथर, 1996 में फायर, 1997 में साज़,

पकड़ी, तहजीब आई थी 2003 में, 2004 में मॉर्निंग रागाज, 2005 में 15th पार्क एवेन्यू, इसी साल यानी 2005 में आई थी वाटर बॉर्न, 2006 में उमराव जान, 2007 में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड।

इसी साल यानी 2007 में लायंस ऑफ द पंजाब प्रेजेंट्स, 2008 में उनकी फिल्म आई थी सॉरी भाई, और 2010 में इट्स वंडरफुल आफ्टर लाइफ। शबाना आजमी मटरू की बिजली का मंडोला इस फिल्म में भी नजर आई थी। दोस्तों, शबाना आजमी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री शबाना आजमी पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत

0: la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फोन और अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आज पहले नंबर पर हमारे कौन श्रोता हैं जो बात करना चाह रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने आज गणेशोत्सव पर बात की है, कुछ श्रोताओं ने अभियंता दिवस के बारे में अपनी जानकारी दी है, अपनी बात साझा की है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला फोन कॉल्स का। ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, बुल्ढाना महाराष्ट्र का।
0: जी बताइए दीपक जी, अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए और बुल्ढाना कहाँ पर महाराष्ट्र के किस इलाके में पड़ता है?
1: जी बुल्ढाना विदर्भ में पड़ता है मैडम, अकोला बुल्ढाना जालना जिला के बाजू में।
0: जी जी, तो अपने उस गाँव की कुछ खासियत बताइए ना।
1: ये हमारा खेड़ा गाँव है मैडम, छोटा सा, खेती किसानी करते हैं
0: हम।
1: साल किसान के बहुत हाल चल रहे, बारिश नहीं, इधर फसल आने के पहले बारिश गई है।
0: ओ, बारिश नहीं हो रही है और बहुत जगह पे तो बहुत ज्यादा असंतुलित बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है।
1: जी हमारे इधर नहीं मैडम, बारिश फसल नुकसान में इस साल।
0: ओ, तो कौन कौन सी फसल होती है आपके यहाँ?
1: या सोयाबीन होती है, मक्का, कपास होती है।
0: ओ, तो सबके लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है ना?
1: सबके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, साल पानी बहुत कम गिरा।
0: जी जी,
1: इस साल परेशान है बहुत हम किसान।
0: हम शुभकामनाएं कर सकते हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आपके तरफ क्या पूरे देश में संतुलित बारिश हो जाए ताकि फसलों को नुकसान ना पहुंचे। और क्या करते हैं फिर, खेती किसानी करते हैं, तो अभी बाग बाग भी है आपके यहाँ?
1: नहीं, बाग नहीं लगाते मैडम, हम यही पारंपरिक पीक लगाते हैं, सोयाबीन, कपास।
0: अच्छा,
1: बाद में गेहूं और हरा लगाते हैं।
0: जी जी, तो वैसे हर साल कैसे पैदावार होती है, हर साल अच्छी पैदावार हो जाती है?
1: दो दो फसल आ जाती है हर साल, गेहूं भी आता है और पहले सोयाबीन भी आती है।
0: जी जी,
1: 19 से अच्छी बारिश रही इस साल तक।
0: तो बारिश अगर नहीं हुई है तो ट्यूबवेल वगैरह जो आधुनिक तकनीक है उससे पानी की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी ना, तो है वो सब तकनीक आपके?
1: ट्यूबवेल है मैडम, कुएं भी है हमारी तरफ, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उसमें पानी आ रहा है।
0: बिल्कुल, उतना इफरात में पानी तो नहीं मिल पाएगा। जी,
1: जमीन की लेवल नीचे गई पानी की।
0: जी अच्छा, बताइए आप आज गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: गणेश उत्सव त्योहार चल रहा है, इसी अवसर पर मैं गाना सुनना चाहूंगा, हमसे बढ़कर कौन मूल का, देवा देवा गणपति देवा।
0: जी जी, तो महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव की बड़ी धूम होती है, तो आपके घर में भी गणपति आते हैं या आपके घर के आस पास? अच्छा,
1: नहीं आते, हमारे गाँव में घर पर तो होता है गणपति, हर एक घर में होता है।
0: और इसी के बहाने लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं ना?
1: जी जी बिल्कुल
0: जी। तो चलिए फिर, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें फोन किया। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं ये।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से?
1: मैम तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूं मैम।
0: जी विनोद कुमार जी, बताइए क्या हाल है मध्य प्रदेश का और आपका क्या हाल है?
1: बस राम जी की कृपा और आपका आशीर्वाद मैडम, बढ़िया है हालचाल। आज मैम हमारी बरसों बाद कॉल लगी है, कोरोना के बाद से आज कॉल लगाए मैम।
0: अच्छा, कोरोना के समय तो हेलो फरमाइश था ही नहीं, बंद हो गया था
1: आज। नहीं, और पहले भी आता था ना मैम अपना प्रोग्राम।
0: जी जी जी, तो चलिए आज लग गया है, तो बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है आपका?
1: जी मैम, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपने अभी गेहूं, मक्का और सोयाबीन लगा है और धान भी लगाई हुई है।
0: तो फसल अच्छी है?
1: जी जी बढ़िया है मैम, अभी तो अब आगे देखते हैं कैसे होगी, अभी तो फिलहाल में बढ़िया है, टॉप 10।
0: जी जी, तो बढ़िया। आपका गांव भरा पूरा गांव है, लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: जी बहुत अच्छे हैं मैम। मैं थोड़ा हमारे अशोकनगर जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल दीजिए।
1: हमारे अशोकनगर जिले में एक गांव है करीला धाम, वहाँ पे रंग पंचमी के दिन बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है, जो कि अपने पूरे इंडिया में फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जानकी माता जी का मंदिर है और मतलब एक ही दिन में 25-30 लाख श्रद्धालु दर्शन करके जाते हैं और अपनी मन मांगी दुआ पूरी होती है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, अच्छी जानकारी दी है। जो लोग सुन रहे होंगे आपकी बात तो वहाँ जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे।
1: ठीक है मैम, वो मेले तो बहुत लगते हैं, लेकिन जो राय नृत्य का मेला होता है ना, वो हमारे अशोकनगर में लगता है, जो कि पूरे अपने इंडिया में फेमस है। मेले तो मैम एक से बड़े एक लगते हैं, लेकिन जो राय नृत्य के लिए जाना जाता है ना, वो सिर्फ अपने करीला धाम अशोकनगर एमपी में ही लगता है।
0: जी जी, तो मेले में और क्या क्या होता है? मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती है, खरीदारी के लिए लोग जाते हैं, मेल जोल के लिए जाते हैं, तो आप मेला देखने किस लिए जाते हैं?
1: जी मैम हम भी जाते हैं, हमारे लोकल में तो हम कभी भी चले जाते हैं, लेकिन जो मेले के समय में जाते हैं वो एक अलग ही बात होती है। और वहाँ की मेन जो अपन पूड़ी निकालते हैं ना, कढ़ाई होती है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से हम कढ़ाई लेकर आते हैं तो अब तेल कम जलता है।
0: अच्छा ओके, और क्या क्या चीजें मिलती हैं कढ़ाई के अलावा, और क्या क्या चीजें मिलती है? भाई हमारे जो बचपन का मेला था ना, उसमें हमको तो बहुत सारी चीजें मिलती थी, खिलौने मिलते थे, किताबें मिलती थी, गुड़िया गुड्डे मिलते थे, और सबसे बड़ी बात वो जो बुड्ढी के बाल होते हैं ना, जिसको गुलाबी रंग का होता है, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो मिलता था, वो खाने हम जाया करते थे। तो आप बताइए अपने मेले का कुछ दिलचस्प अनुभव।
1: मैम मेले का अनुभव ये होता है कि जैसे हम पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो किसी को टिक्की खानी होती है, किसी को चाट खाना होता है, किसी को कुछ गुड्डे गुड़िया खिलौने छोटे बच्चों के लिए लेना होता है।
0: तो टिक्की चाट
1: बचपन किया था।
0: हाँ, टिक्की और चाट अकेले खाते हैं कि अपने घर वालों को ले जाते हैं साथ में, उनको भी खिलाते हैं, दोस्तों मित्रों को भी खिलाते हैं?
1: मित्रों को भी खिलाते हैं, दोस्तों को भी, सभी बैठकर मिलके एक साथ में खाते हैं, तो वो आनंद ही कुछ अलग होता है। मैम ऐसे जब साथ में खाते हैं ना, तो बचपन की यादें और भी ताजा हो जाती हैं।
0: जी जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम फिल्म का नाम है अग्निपथ, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम
0: जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम दोनों दोस्त है, परभनी से। सतीश सावे मेरा नाम है और दोस्त का नाम पांडुरंग मोरे।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है लावारिस।
0: जी जी,
2: तो ऐसे वैसे।
0: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं जी। अपने बारे में कुछ बताइए और अपने दोस्त जो जिनका नाम लिया उनके बारे में भी बताइए। कैसी है दोस्ती आपकी? कभी दोस्तों के बीच पटपट नहीं होती है?
1: हमारी पक्की है।
0: पक्की है? अच्छा, कैसे पक्की की दोस्ती? कुछ तकरार नहीं होती कभी?
1: हमारी दोस्ती हमारी 10 साल से है।
0: अच्छा,
2: विविध भारती की दोस्ती वैसा हमारी दोस्ती है।
0: जी जी, अच्छा।
2: जैसा रेडियो मित्र है वैसा हमारा मित्र है।
0: जी, और कुछ कहना चाहते हैं?
2: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें फोन किया।
2: पापा के शुभकामनाएं आपको, सबको, जो श्रोता सुनने वाले उनको भी।
0: जी जी, आपको भी।
2: विसर्जन के दिन अच्छा देखभाल करो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे है उनके ध्यान दीजिए, क्योंकि आजू बाजू में गाड़ी आते हैं।
0: विसर्जन पर ध्यान देने की बात जो कही आपने, बड़ी सही बात कही है कि उस समय एक जो निजी स्तर पर सोच होती है वो आपको ठीक रखनी चाहिए कि मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो उसमें बच्चों का ख्याल रखें, और कोई बीमार मरीज है तो एम्बुलेंस है जा रहा है तो उसको रास्ता दीजिए, वो अपनी भीड़ से निकाल देना चाहिए ताकि कई बार जान को खतरा होता है तो उनकी जान बच जाए।
2: बारिश तो नहीं गई, लंबे बॉडी की तरफ जाना पड़ता, वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, गणपति के साथ में ले जाओ मत, बड़े बड़े को एक दो अंदर उतर सकते हैं पानी में।
0: जी जी बिल्कुल, और अब सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको सीधे पानी में नहीं उतारते हैं, वो बाकायदा जगह जगह कुछ ऐसे गड्ढे भी बनवा देते हैं और वहीं एक सीमा तक जाने देते हैं, सीधे आपको पानी में उतरने नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।
2: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। आदाब मैडम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मेरा नाम नहीं है मलिक, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी, आज जब से दोबारा हैदर फरमाइश स्टार्ट हुआ था, आपके साथ दूसरी बार बात कर रहा हूँ ममता जी।
0: जी बहुत शुक्रिया, आपका शुभ नाम क्या है?
1: जी नहीं मलिक, मेरा शुभ नाम है, सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ बात कर रहा हूँ।
0: तो सबसे पहले तो बड़गांव के बारे में आप जानकारी दीजिए। कश्मीर खूबसूरत वादियों की जगह है, जन्नत का सा नजारा है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए बड़गांव के बारे में, वो कैसी जगह है, कहाँ पर?
1: सेंट्रल कश्मीर में, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। हमारा जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, वो भी हमारे बड़गांव में भी मौजूद है। और हमारा बड़गांव सूफी शायर के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। और अच्छी बात यह है कि ये सेंट्रल श्रीनगर से मलाल चौक जो हमारे कैपिटल है वहां से मात्र 15 किलोमीटर दूर है।
0: जी,
1: और बड़गाम इस बड़गाम इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बड़े बड़े गांव है, इसलिए इसका नाम बड़गाम रखा था।
0: अच्छा, क्या बात है भाई। तो वहाँ पहाड़ों के बारे में बताइए, कैसी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ वगैरह गिरती है क्या?
1: बिल्कुल गिरती है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं टूरिस्ट पॉइंट के आसपास रहता हूँ, दूध पथरी एक मशहूर जगह है, उसी के आसपास रहती है, जंगल के किनारे है, बड़े बड़े पहाड़ है और बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है जिस एरिया में मैं रहता हूँ।
0: जी जी, आप क्या करते हैं वहाँ पर?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे दीवारों पर पेंट वेंट लगाते हैं, सीपी के जो आइटम होते हैं जैसे बीप कॉक शावर होते हैं, वही बिजनेस में करता हूँ। अपने ही गांव में 2-4 शॉप है हमारे पास, और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा जो कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दुआएं इस बात के लिए।
1: क्रिकेट, और बचपन से लेकर अभी तक क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना मुझे बहुत अच्छा है, मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बचपन के शौक है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो शौक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, वो तो अपने मोबाइल के गेम में ही गुम रहना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वो खेलना नहीं चाहते, उनको बोला जाए तो भी नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ये खेल वगैरह, इसकी कोई कोशिश करते हैं आप?
1: बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आजकल पहले जमाने में नहीं होते, लेकिन आजकल स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स टीचर अलग मिलते हैं और सरकार ने भी कदम उठाया तो बहुत अच्छा, हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि जो आजकल जो नशीली होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, इससे हमारे बच्चे दूर रहते हैं।
0: जी, और दूसरी बात ये कि यहाँ आपके इलाके में तो खुली वादियाँ हैं, खुली जगह है, वहाँ खेलने के लिए जगह भी मिलती होगी?
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
0: तो कभी बर्फ गिरी हो और

0: क्रिकेट खेलते रहे हो, ऐसा कोई अनुभव है?
1: बचपन में हमने खेला है, तो दो चार बार हमने खेला है।
0: बारिश हो रही है,
1: बर्फ गिरी थी, हमने क्या किया, यहाँ बर्फ जमती है बहुत ज्यादा जमती है, और उसके पिच लगाना बहुत आसान होते है। फिर हम टेनिस बॉल सबसे ज्यादा खेलते उस बर्फ पे। बचपन में क्या करते है, बर्फ को छोटे छोटे बॉल बनाते और एक दूसरे पर फेंकते हैं, बहुत ज्यादा होती है।
0: क्या बात है, ये तो आप बचपन की बात बता रहे हैं। जो टूरिस्ट होते हैं पर्यटक, वो तो अभी जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो बड़े भी खेलते हैं ऐसे बर्फ का गोले बना के एक दूसरे पर फेंकते, वही तो खेल का आनंद होता है बर्फीली वादियों में, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, दो चार बार मैंने देखा है।
0: और अब तो उसे वीडियो बनाने के लिए भी ये किया जाता है, खेले चाहे ना खेले लेकिन वीडियो जरूर बनाते हैं लोग। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैंने गाना भी वही चुना है। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, संजय कपूर वाली एक मूवी आई थी सिर्फ तुम, उदित नारायण की खूबसूरत आवाज, यानी कि बोले पंच ईश्वर में गाते हैं बावरे गुनगुनाते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। ममता दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सुनारी असम से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
0: भाईकन मुंडा
1: जी मैम।
0: अच्छा, कौन सी जगह?
1: चौराहे डिस्ट्रिक्ट सोनारी असम।
0: जी जी, जरा उस जगह के बारे में बताइए आप जहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी मैम, यहाँ तो मौसम अभी सुहाना है, अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है और धान खेती का ये अभी है ना, और चाय बागान है।
0: चाय बागान देखने में बड़ा अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन उसकी सुना है कि उसकी पत्तियां काटने में बहुत टाइम लगता है, तो आपने ये काम किया है कभी?
1: हाँ हाँ, मैं चाय पत्ती का पहले चाय पत्ती को तोड़ के उसको फैक्ट्री मतलब कारखाने में उसको लेके जाता है, इसको प्रोसेस रहता है मैम चाय पत्ती बनाने का।
0: जी जी,
1: उसमें मशीन में डाला जाता है।
0: हाँ,
1: फिर इसके बाद इसको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बन के रेडी होता है, फिर इसको पैकिंग किया जाता है, ऐसा है,
0: और लोग फिर चाय का स्वाद लेते हैं। और
1: जी जी मैम,
0: स्वाद लेते हैं, तलब भी होती है। वहाँ का एक नृत्य बहुत मशहूर है, आपको पता है कौन सा?
1: यहाँ तो बिहू। हाँ मैम, बिहू यहाँ का मतलब बिहू ही तो असम का जातीय उत्सव बोलते हैं ना हम लोग।
0: जी, तो कौन से उत्सव पे ये नृत्य किया जाता है?
1: मैम देखिए, यहाँ तो बिहू नृत्य, बिहू जो है वो बैसाख महीने में ये होता है मैम, पहला बैसाख से ये महीने भर चलता है।
0: जी जी, तो आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, उसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। और मैम आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, पहली बार कॉल लगा है मेरा, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन आज कॉल लगा है तो खुशी हो रही है।
0: बहुत खुशी हमें भी हो रही है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको कि आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: जी बेमेतरा छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: जी भाई, छत्तीसगढ़ की हसीन वादियाँ मतलब कैसी हैं? वहाँ पर क्या पहाड़ी इलाका है क्या ये? वो तो
0: जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है ये वनांचल क्षेत्र है।
1: जी जी अच्छा,
0: तो पर्वत पहाड़ तो मतलब काफी है, जंगल है, घना जंगल कह सकते हैं। और जब वहाँ घूमने

0: भी जाना होता है तो वो रास्ते में ही इतना मजा आ जाता है कि क्या कहें।
1: बहुत बढ़िया। तो आप वहाँ के जंगलों के बारे में जरा कुछ बताइए।
0: काफी घना जंगल है और वहाँ जाते हैं तो जो चित्रकूट और तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो काफी मनोरम है। और रास्ते काफी मतलब जैसे सर्पाकार नहीं होते,
1: अच्छा
0: उसी तरह से काफी मतलब मुश्किल भी है ऐसा कह सकते हैं।
1: जी जी,
0: लेकिन आनंद भी बहुत आता है।
1: छाया दिखती होगी और वो जो एक समय ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है लेकिन पता चला कि वहां से एक रास्ता खुल जाता है। तो जंगलों में जाते हुए जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं रास्ते, वो बड़े लुभावने और सुहावने लगते हैं। एक वहाँ सतपुड़ा के घने जंगल कितनी दूर है वहाँ से? जंगल
0: दूर है हमारे यहाँ से।
1: अच्छा, सतपुड़ा के घने जंगल पर एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी है जो बिल्कुल वो दृश्य पैदा करते हैं। वो जैसे सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, याद है आपको ये कविता?

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की कविताएं बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उन कविताओं के बारे में बताना चाहिए, जब खास तौर से जब ऐसे जंगल की ओर, जंगल की सैर के लिए जाते हैं तो, है ना?
3: जी जी जी जी।
2: एक बात और कहनी थी कि ये जो जंगल है, जंगल की खूबसूरती है, इसको बचाए रखने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए?
4: देखिए, जंगल तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, और जो हमारा मानव जीवन ही नहीं, मतलब जो हमारा पूरा पृथ्वी जगत कह सकते हैं, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारी चीजें आती हैं, तो बचाने के लिए तो यही है कि जंगलों के कटाव को रोके, और जो बहुत ज्यादा हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जंगलों का जो काटने का काम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इनको बचाना जरूरी है।
2: बिल्कुल सही बात है। और नए पौधे रोपने चाहिए, ये नहीं कि बाप दादा ने जो लगा दिए हैं, जो पेड़, आम के पेड़ लगा दिए, बस वही आम खा रहे हैं, वही जामुन खा रहे हैं। नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि जंगल की संपदा हमेशा बनी रहे, हरी भरी बनी रहे।
4: बचपन में हमने लगभग 20 पेड़ लगाए थे तालाब के किनारे किनारे, और वो पेड़ तो आज बहुत वृहद हो गए हैं, लगभग 20 से 25 साल के।
2: जी, बहुत बढ़िया। और रोज नहीं तो किसी खास मौके पर एक एक पेड़ रोपते रहे तो कितने सारे हो जाएंगे। और क्या काम काज है आपका?
4: हमारा प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम है।
2: अच्छा, तो कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
4: अभी तो धान बहुत आया था, और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा गया है।
2: बिल्कुल, और वहाँ के चावल बड़े खुशबूदार होते हैं, बड़े सॉफ्ट और मिठास होती है उनमें। कौन कौन से चावल पैदा होते हैं?
4: बासमती, ये जो मिठास की अब बात की है वो है, और हमारे इलाके में सरना और महमाया, ये दो किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं।
2: जी जी, तो अब बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया जाए?
4: फिल्म कलाकार से सुनवा देंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जो आए।
2: बहुत बढ़िया बातचीत कही आपने। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं हेलो फरमाइश से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही आपका फोन लगा है, बताइए आप कौन बोल रही
1: हैं? मैं नेहा तिवारी छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: जी बताइए नेहा जी।
1: बहुत मशक्कत के बाद मुझे आपका फोन लगा है
0: जी,
1: इस पार्टी में।
0: जी बहुत शुक्रिया कि आपका फोन लगा और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बताइए, आप छतरपुर से बोल रही ना?
1: जी छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: छतरपुर के बारे में बताइए और नेहा जी अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से
0: जी।
1: और छतरपुर हमारा बहुत ही जो एक विरासत है, चंदेरा राजाओं के द्वारा बनाई गई खजुराहो, वो करीब मेरे छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संरक्षित स्मारक है। और उसके निर्माण में भी बहुत सारे कारीगर इंजीनियर ने योगदान दिया है।
0: देखिए नेहा जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से और ये बात बता रही कि बहुत सारे इंजीनियर्स का योगदान है इस जगह के बारे में, तो जो हम बात कर रहे हैं ना, जिन ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ भी इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो ये कहेंगे कि अगर इंजीनियर का योगदान नहीं रहे तो ये जहाँ रेडियो जो चैनल है, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो फिर कैसे होगा? आप चूंकि पेशे से इंजीनियर हैं तो आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे?
1: जी, हम जो देश के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है, और यह भारत रत्न उनके मेहनत को सम्मानित करने के लिए यह दिन तय किया गया था।
0: जी जी।
1: श्री विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध और बाढ़ सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
0: जी जी।
1: और श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में क्या कहें, उनकी इतनी उपलब्धियां इस आधुनिक भारत को है, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है।
0: नेहा जी हमें बताइए कि अब जो जमाना है, बिल्कुल तकनीक का ही जमाना कहा जाता है इसे, और जो नई पीढ़ी आ रही है तकनीक से ही जुड़ी हुई है, तो तकनीक का जो उपयोग भी होता है, सदुपयोग कई बार दुरुपयोग भी होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे? कुछ
1: जी, किसी भी चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग को ही आप वरदान या अभिशाप कह सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भी यही है। तकनीक का इस्तेमाल यदि हम अच्छी बातों के लिए, जैसे हम मसलन आजकल की युवा पीढ़ी यूट्यूब रील्स इत्यादि कई चीजों में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और कई बार उन्हीं चीजों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, विज्ञान अभिशाप और वरदान इसी रूप में है।
0: जी,
1: इसी तरह से तकनीक भी अभिशाप और वरदान इसी रूप में है।
0: अच्छा नेहा जी, ये बताइए कि चूंकि आप इंजीनियर हैं तो आपने, और आकाशवाणी में इंजीनियर हैं, तो क्या नई तकनीक आपने लाई है? मतलब आपको क्या लगता है कि इन दिनों नई तकनीक क्या क्या आई है, कुछ परिवर्तन के बारे में बताइए ना।
1: जब मैंने इस विभाग में अपनी सेवाएं देनी शुरू की थी, अब एक बहुत ही सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके, और मैकेनिकल हुआ करती थी, जो कि काफी वक्त और गुणवत्ता में भी उतनी उत्कृष्ट होने में काफी समय लेती थी। पर नई तकनीक की वजह से, हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने की वजह से, और अभी तो हमारे पास AI है, अभी हमारे पास प्रसारण में भी हमारे पास अपना वेब ऐप है, और हमारे पास न्यूज ऑन एयर ऐप है, तो इन सब गुणवत्ता बढ़ने से तकनीक में करीब करीब मैं बता रही हूँ कि 360 डिग्री जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
0: जी बहुत बढ़िया बात कही। अब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: जी मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर से जुड़ा एक गाना बेहद पसंद है, जब आओ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल।
0: क्या बात है,
1: थिंकिंग इडियट का गाना है और मुझे बेहद पसंद है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब हम बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी, आपको प्यार भरा नमस्कार। ममता दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी विविध भारती परिवार की ओर से। बताइए आपका नाम क्या है?
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से।
0: जी अशोक प्रजापति जी बताइए क्या हाल है, वाराणसी का क्या हाल है?
1: वाराणसी का हाल चाल दीदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
0: वो जो बनारस में गंगा आरती होती है शाम को, उसके बारे में बताइए जरा।
1: जी हाँ, गंगा आरती के बारे में आपने कहा तो दफा सुमे घाट पर हमारे कनमदे आरती कनमदे होता है 7 बजे से। आरती बहुत बढ़िया होता है और दुकानदार और हम लोग समय से पहुंच जाते हैं वहाँ पर और देखने के लिए तो हम लोग जगह करते हैं मैम। और बहुत बढ़िया ढंग से होता है और हाथ जोड़ के सभी लोग खड़ा रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं।
0: भाई उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है और वहाँ बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है जब गंगा जी में जैसे सूरज बिल्कुल उगता है पानी में से, ऐसा दृश्य होता है। तो वो दृश्य हमने तो नहीं देखा लेकिन लोग बताते हैं, आपने देखा है कभी?
1: जी नहीं कन्नम ने देखा नहीं है, हम तो जाते हैं देखे हैं, ये बात नहीं है समय से। तो सच बात है कि हम लोग जब जाते हैं जैसे विश्वनाथ जी गए और गंगा जी घूमने गए और समय के हिसाब से अगर आरती के समय से हम लोग जाते हैं तो जैसे तर्तीवार हो गया तो तब ठीक है, पहुंच गए, बड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं।
0: सही बात है, बनारस की चाट बड़ी मशहूर है, बनारस का पान बड़ा मशहूर है, अब हम ही सब बता देंगे, आपको कुछ बताएंगे?
1: जी बनारस के तो आपने पान के बारे में ये बात कही है ममता दीदी की, हकीकत सच बात है कि हर व्यक्ति के मुंह में जो उम्र हो जाती है, छोटे बच्चे तो नहीं 18 साल से चालू कर लेते हैं पान खाना और जो और पान भी खाएंगे और काम धंधा में अपना व्यस्त रहेंगे।
0: और वहाँ की गलियाँ पतली पतली सकरी सकरी गलियाँ।
1: हाँ ये तो पतली पतली जो गलियां है जैसे कि कचौड़ी गली में है और जैसे कि बहुत दूर से कचौड़ी गली में हिलते ही मतलब खोवा मंडी में जैसे एक अजीब सा महक आती है कि हमने कचौड़ी गली आ गया।
0: अच्छा कचौड़ी गली का नाम लिए, सुनिए कचौड़ी गली का नाम लिए, कचौड़ी गली का एक लोकगीत में भी आ गया है वो कचौड़ी गली, याद है क्या वो गनवा आपको?
1: जी जी जी
0: याद है तो सुनाइए जरा।
1: जी नहीं हम गा सकते,
0: नहीं गा सकते,
1: नहीं नहीं गाना तो देखिए कचौड़ी पर जो आपने बात कहा है कि गाना आ गया है तो हमने सुना नहीं है दीदी, देखिए बात जो हकीकत है तो कचौड़ी गली जो हम लोग के बाप दादे से सब बहुत सदियों से ये है का नाम है, हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी कचौड़ी गली हम लोग जब जानकार हुआ तो हम लोग भी जब बनारस जाने लगे तो बाबू जी से पूछने लगे पिताजी से कि ये कचौड़ी गली कौन सा होता है, कल कचौड़ी हुआ मैसूर है, कचौड़ी इतना अच्छा बनता है स्वाद, हो सकता है शायद विश्वनाथ जी के दुआ है कि कनमरे जय संकट मोचन का भगवान श्री राम जी का जो भी है सचमुच है कि कचौड़ी ऐसा नहीं बन पाता,
0: नहीं मिल पाता, वो स्वाद नहीं मिल पाता और जो बनाते हैं उनके हाथ की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो मनोयोग से बनाते होंगे वो एक अलग तरह का स्वाद होता है और फिर वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है। तो अलग तरह की बात है कि कचौड़ी के नाम से वो गली मशहूर हो गई है और छोटे शहरों की ये खासियत है कि पान वाली गली और कचौड़ी गली और जो खस्ता दमालू वाली गली, इस तरह से नाम जो मशहूर हो जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति के नाम से मशहूर होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जगह वो मशहूर हो जाती है, वो जगह उसकी एक अलग तरह की खासियत होती है ना। और कौन कौन से घाट वहाँ के मशहूर हैं?
1: हाँ तो जी जैसे कि दशाश्वमेध घाट से 80 घाट इतना घाटे सब एक एक घाट जुड़ा हुआ है, सब हम लोग जब जाते हैं ना हम लोग को खुद नहीं पता चलता कि ये घाट तो हमने 10 मीटर चले फिर 10 मीटर चले फिर 20 मीटर सब घाटे ही घाट घाटे ही घाट, तो इसीलिए 180 घाट उसको माना जाता है।
0: जी जी
1: 180 घाट सब जुड़ा हुआ है
0: बिल्कुल। अच्छा बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी गाना जरूर सुनना चाहते हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, उज्जैन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बताना चाहेंगे, उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो बिल्कुल शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ का मेला भी 2028 में लगाया जाएगा यहाँ पर।
0: अच्छा, और आपका क्या काम काज है?
1: हाँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ ममता जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, गायक है, भजन गायक, तो कुछ गा के सुनाइए।
1: हाँ जी, हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम 4 लोग आने वाले हैं। हारमोनियम बजाते हैं, ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: तो आप हारमोनियम बजा के गा लेते हैं कि सिर्फ गाते हैं? हारमोनियम कोई और संगत करता है?
1: मैं जन गाने का काम करता हूँ।
0: तो ये कुछ गाने के लिए सीखा आपने कि बस ऐसे गाते गाते शुरू हो गए?
1: हाँ, बस कहीं सीखा तो नहीं ममता जी, बस मोबाइल पे या ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको सुन सुन के मतलब सीखे हैं हम 2019 में, जब कोरोना टाइम आया था उस समय पर।
0: अच्छी बात है।
1: जी, हमारे गुरु जी है, वो हमें सिखाते हैं। निर्गुणी भजन की प्रस्तुति भी हम देते हैं ज्यादातर, और भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं।
0: जी, बड़ा बढ़िया लगता है भाई। अब तो जैसे समय लोगों के पास कम होने लगा है, कीर्तन वाला तो जैसे युग ही खत्म हो रहा है, बहुत कम बचे हैं लोग जो कीर्तन गाते हैं। नहीं तो बाकायदा कीर्तन गाने के लिए बुलाया जाता था लोगों को घरों पर भी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हमारे इधर भी ममता जी ऐसा ही है, किसी बच्चे का बर्थडे हुआ या कोई धार्मिक फंक्शन होता है ना प्रोग्राम, उनके मतलब यहाँ पर हमें बुलाया जाता है।
0: अच्छा,
1: और हर मंगलवार और ऐसा जो मंगलवार के दिन तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है हमारे मंदिर पर।
0: तो किन कवियों की रचनाएं आप गाते हैं ज्यादातर जो भजन गाते हैं?
1: ज्यादातर तो, हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, ज्यादातर तो हम प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के भजन गाते हैं, निर्गुणी भजन, और एक और भजन आते हैं यूट्यूब पर राजू दास जी के, उनके भी मतलब हमने भजन काफी गाए हुए हैं।
0: जी, प्रहलाद सिंह टिपानिया तो जब गाते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। तो अब जरा अपने अपने हुनर के बारे में बताइए, आप जरा गा कर सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी।

0: तारे तू। जी ममता जी,
1: जी बहुत बढ़िया आपने गाया, और हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे भाई, जिनके पास ये कला होती है वो बड़े खुश रहते हैं। जब आपका मन थोड़ा बहुत दुखी हो, उदास हो, तो आप गाकर खुद को हील कर सकते हैं, खुद को आप खुश कर सकते हैं ना। तो
0: जी,
1: अब
0: बिल्कुल
1: कौन सा
0: और बताना चाहूंगा मैं। हाँ। उससे पहले बताना चाहूंगा, मैं मोबाइल ऐप पे विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ, और सखी सहेली हेलो फरमाइश पिटारा के तहत आने वाले सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनकर मतलब कुछ ऐसे बातें होती है ना उन्हें नोट भी करता हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। फिलहाल बताइए अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी फिल्म का नाम है इतिहास, और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है।
1: धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुनवा रहे हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमें कृपया अगली बार 2 महीने बाद फोन करें। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर है 4002466। मुंबई का STD कोड है 022। और जब भी आप फोन नंबर डायल करें उससे पहले मुंबई का STD कोड 022 जरूर डायल करें। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सौरभ घारू, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

परवरिश फिल्म से ये कव्वाली आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और सखियों की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं

फिल्म बाजार की ये गज़ल आप सुन रहे थे भूपेंद्र की आवाज़ में। बशर नवाज की लिखी ये गज़ल थी, खयाम की तर्ज थी। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

मिस्टर सिंह, मिसेस मेहता, इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा की आवाज़ में। अमिताभ वर्मा के बोल थे, उस्ताद हुसैन खान की ये तर्ज थी।

0: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

सजना इस एल्बम का गीत है आवाज श्वेता शेट्टी की। यशपाल तनवर के बोल हैं, डीजे मूडी का संगीत।

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग। बेगम अख्तर की आवाज में ये दादरा।

0: ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण, ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें, सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द, इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वादा रहा इस एल्बम में आप सुन रहे हैं बाबू मान की आवाज, गीतों संगीत बाबू मान के, और यही है रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश श्रोताओं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डियल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय

0: कमेटी को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HJT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए गाने से। बोल निदा फाजली के हैं, संगीत उषा खन्ना का और फिल्म स्वीकार किया मैंने।

स्वीकार किया मैंने इस फिल्म का गाना. आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में. और आपको याद दिला दें, आज जानी मानी अदाकारा शबाना आज़मी का जन्मदिन है. तो चलिए विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ. और आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम करते हैं. सुनिए अगला गीत.

0: फकीरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर
2: मार उड़ानी मार उड़ानी।
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ

0: पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्द देखने के लिए। तो अगर वो जर्द कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज शबाना आजमी जो जानी मानी अदाकार हैं उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम बधाई दे रहे हैं और उन्हीं के नाम आज का यादों की महफिल कार्यक्रम। ये लिबास फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये था गुलजार का लिखा गाना। संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी लिबास। लीजिए अब पेश है अर्थ फिल्म की एक गजल जगजीत सिंह की आवाज में। कैफी आजमी के बोल कुलदीप सिंह की तर्ज है।

0: जंबो जेट जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया फासले और कुछ श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, जहां डायरी में लिखे अफसानों की बातें होंगी। क्या होता है जब आपकी डायरी चुपके से पढ़ ले कोई, क्या होता है जब हम आंखों से किसी के भीतर क्या चल रहा है पढ़ लेते हैं, तो नजरों से पढ़ने को किसे कितना इल्म है। तो सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल जानिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि सारे श्रोता अपने दिल की बात बताएं और बताएं कि आंखों से कौन सी भाषा आपने कही, सामने वाले ने समझ ली किससे कही, और आपने कब समझी आंखों की भाषा किसकी, पत्नी की, प्रेमिका की, अपने माँ की, पिता की, भाई की वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, तेरी आंखों की चाहत में गानों के बहुत सारे बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है अफसाना, नजरें, आंखों, चुप, छोटी, इंतजार, शाम, जिंदगी, हो सकते हैं आज के शब्द। आज के शब्द ढूंढना तो बहुत आसान है और गाने चुनना भी बहुत आसान है। बहुत सारे श्रोता चुन भी रहे हैं और हम उन श्रोताओं के गानों को शामिल भी कर रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट में, क्योंकि आज हमने सोचा था कि आपके चुने हुए गानों से ही अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखों आंखों में बात होने दो, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा कोई अफसाना डायरी में दर्ज करना हो। श्यामल रातों में जलने वाले दीपक की लौ देखकर प्रेमी का इंतजार करना, कुछ प्रतीक्षा जीवन का आकार ले लेती है, वो समाप्त नहीं होती। प्रतीक्षा में शब्द नहीं होते, वे तो प्रकट होते हैं हवा की थरथराहट से, मोबाइल की हल्के कंपन से। प्रतीक्षा में धीरज नहीं, एक बेचैन ठहराव होता है। बरामदे में बैठी प्रियतमा हर सांझ सड़क की ओर देखती है, वही मोड़, वही पेड़, वही धूल से भरा रास्ता, वो जानती है वो आएगा फिर से। तो इसमें आज की इबारत में हमने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं, इन्होंने जवाब भी दे डाला है कि वो आएगा। हमने ये भी पूछा है कि कब आएगा, कैसे आया और किस मोड़ पर आया, और डायरी के पन्नों में आपने क्या कुछ अंकित किया, गाने के बोल, फिल्म का नाम, कहानी, कविता, या अपनी दिनचर्या, या फिर अपनी कोई दुखद बात, या कोई बहुत खुशगवार लम्हा। बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

अनपढ़ फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है कलाकार हीरो हीरोइन का नाम। अभी तक श्रोताओं की ओर से बहुत जवाब नहीं आए तो हम इंतज़ार करेंगे, अगले गाने के बाद आपको बताएंगे सही जवाब। तब तक आप लिख सकते हैं इस फिल्म में कौन थे कलाकार, इसका जवाब आप लिख सकते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे डायरी लिखने की आदत तो नहीं पर अपनी पसंदीदा गीतों को विविध भारती से सुन सुनकर नोटबुक पे नोट ज़रूर करती थी ताकि उन्हें पढ़कर गा सकूं। इस तरह से काफ़ी सारे नोटबुक का कलेक्शन हो गया था और कितने गीत मुज़बानी याद भी हो गए। फिर समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, अब तो सब कुछ मोबाइल में मौजूद है। तो ज़रा आज ये जो इबारत है इसमें जो शब्द हैं शब्दों से गाने याद कीजिए जो डायरी में आपने लिख रखे हैं, नोट किए हैं गाने के बोल फिल्म का नाम, तो कोई ना कोई गाना तो इसमें होगा, लिखिए और हम उसे अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करके आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी श्रोताओं से ये अनुरोध है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफ़र में अफसाने के निगाहों के चुपके से देखने, खड़े रहने के एक मोड़ पर मिलना, बिछड़ने की इस छोटी सी दुनिया में कभी तो मिलने के खामोशी से आंखों से देखने के गीत एक गुलदस्ते के समान सुनने को मिले, धन्यवाद। मेरा नाम लिखा है, धन्यवाद। तो आप सभी को हम कह रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं और हाँ, जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब भी देते चलिए और जो गाने हैं शब्द हैं शब्दों को चुनते चलिए और गाने के बोल लिखते चलिए। अब ज़रा सोचिए कि ये गाना आपने याद किया था आज, मुझे तो अब तक ये गाना नहीं नज़र आया था लेकिन हमने सोचा कि ये गाना बजा कर देखते हैं आप में से कितने लोग इस गाने को सुनते हुए कौन सी बात याद कर सकते हैं। डायरी वाली बात या जो इबारत में हमने सवाल पूछा है कि वो मुलाकात किस तरह से हुई, जो बिछड़ गया राही तो वापस मिला तो कहाँ, किस मोड़ पर, कैसे मिला, कैसे मुलाकात हुई और आंखों से कौन सी बात कही। फिल्म का नाम बूझिए, किसकी है आवाज ये भी बूझिए, दो आवाजें हैं। विविध भारती से किस प्रोग्राम में ये गाना सुना था ये भी बताइएगा।

भाई वाह, लगता है ये गाना हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया। बहुत त्वरित जवाब आने शुरू हो गए। बड़ी बहन फिल्म का नाम फटाफट लिखा हमारे श्रोताओं ने, और साथ में लता मंगेशकर और प्रेम लता की आवाज़ें हैं, और बहुत लोगों ने ये लिखा है कि भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बजता है ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि परसों ही तो ये गाना भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी यादों की डायरी में निम्नलिखित गीत हैं, प्रेम है, प्रेम पिया, और कागज था मन मेरा, मेरे महबूब, वगैरह वगैरह गानों की लंबी फहरिस्त इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो गाना आपने सुनवाया था, आपकी नज़रों ने समझा, अनपढ़ फिल्म का, माला सिन्हा और धर्मेंद्र, ये जवाब बिल्कुल सही दिया है। और ये जवाब एक ही श्रोता नहीं बल्कि बहुत सारे श्रोताओं की ओर से आ चुका है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, लेकिन इस गाने में चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, तो ये जो चुप भाषा है, खामोशी की भाषा है, ये बड़ी अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो ज़रा बताइए कि आप कब खामोश रहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम कुछ नहीं बोलते लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं, और नज़रें बोलती हैं, आँखें बोलती हैं, आप नहीं बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सी ऐसी घड़ी आई जब आप चुप होकर जवाब देते हैं? कई बार तो कोई करारी बात होती है, कोई ऐसी बात होती है जो दिल दुखाने वाली बात होती है, फिर भी आप चुप जाते हैं, लेकिन आपकी वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है।

एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा अफसाना डायरी में दर्ज करना हो। ये टिप्पणी पहले आ चुकी है और आप तक पहुंचा चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पानी पे लिखा खामोश अफसाना जो शबाना दी के लिए, उनकी हिरनी सी बड़ी बड़ी आँखों में उजालों के दिए जलते, एक खूबसूरत से ख्वाब आँखों में पले, मुस्कुराए वो खिलखिला के तो आसमां से चांदनी के नूर बरसने लगते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर हम चुप रहकर जवाब देने की और आंखों की भाषा की नज़रों की बात, तो ज़रा सुनिए ये गाना और बूझिए फिल्म का नाम और बताइए किसकी आवाज़ में है ये गाना।

फिल्म थी 20 साल बाद और वहीदा रहमान विश्वजीत थे कलाकार। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी भी दी है और सही जानकारी दी है। वाह, एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत, ये तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। हेमंत कुमार की आवाज़ थी और शकील बदायूनी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था। गज़ब के बोल थे, ज़रूरत क्या तुम्हें तलवार और खंजर की, तो क्या ऐसी आँखें ऐसी निगाहें आपके इर्द गिर्द भी हैं? जब आप किसी की आंखों की तारीफ करते हैं तो यूं जरा बताइएगा, ये भी आज अपने दिल की बात कह डालिए खामोशी से, नजरों की बात भी कह डालिए खामोशी से। एक श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद जरा नजरों से कह दो जी, एक सदाबहार क्लासिक है इस गीत को, मशहूर गायक हेमंत कुमार ने मखमली आवाज दी है, इसका संगीत भी उन्होंने तैयार किया था, क्या खूब लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि डायरी लिखना भाव प्रवणता की निशानी है, और बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि डायरी तो लिखी लेकिन फिल्म के नाम और गीत के बोल लिखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें गाने नहीं याद होते हैं तो उस समय हम डायरी के पन्ने पलट लेते हैं, हालांकि आजकल पन्नों की ओर कौन जाए, मोबाइल के ही नोट पैड में लिख लिया करते हैं, लेकिन नोट पैड भी, मोबाइल का नोट पैड भी एक तरह का डायरी का काम किया करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो कमेंट भी खामोश रह जाते हैं, ज़रा कुछ लिखिए तो सही, खामोश नहीं बिल्कुल बोलते हुए नजर आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की आंखें ही बच्चों को पता चल जाती हैं कि माँ किस मूड में है, और टीचर की निगाहें, उसका जिक्र भी तो कीजिए कि टीचर आज किस मूड में है। कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे तो उनकी पोशाक पहनकर हम अंदाज़ा लगाया करते थे कि अरे आज मिस ने ये वाली साड़ी पहनी है, इस दिन तो गुस्सा करती हैं तो आज ज़रूर गुस्सा करेंगी, ऐसा भी होता था। तो कौन सी आपकी टीचर हैं जिनकी निगाहों से आपको डर लगता था लेकिन अदब बहुत करते थे, उनके प्रति प्रेम भाव स्नेह भाव बहुत होता था। ये आपको अपने अनुभव साझा करने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विभिन्न मुल्कों में हर देश की एक निर्धारित सरहद हुआ करती है और उस सरहद के निगहवान आंखें ही होती हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि देशो ही द्विविधा, और तात्पर्य देश को भूमि के साथ ही साथ आतुर भी कहा जाता है। आतुर तो ये शरीर ही है, प्रणय में फिर ऐसी ही आतुरता देखी जाती है, जिसके निगहवानी का भरोसा जब प्रेमियों के बीच पनपता है तभी प्रणय साकार होता है। जरा आसान भाषा में लिख दीजिए भाई, ताकि हमारे सारे श्रोता समझ लें ये बात। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की होंगी बातें जिनके बिना जीवन वीराना लगता है, कल्पना कीजिए कि वे कैसे जीते होंगे जिनको ये सुख प्राप्त नहीं होता। आज एक गीत सुनने की तमन्ना है, 1964 की फिल्म है शबनम का गीत, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। चलिए फिर यही गाना सुन लिया जाए। कई श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है और बहुत सारे श्रोता बहुत सारे गाने लिख रहे हैं, तो आप अपने गानों की डायरी खोलिए और उसमें से गाने चुनिए, आप जो सुझाव देते रहेंगे वही गाना सुनवाएंगे। सुनिए शबनम फिल्म का गाना, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। अगली कौन सी फिल्म हो, अगला कौन सा गाना हो, जरा बताइएगा। आंखों की, चुप रहने की, खामोशी की, अफसाना की, बहुत जल्द बताइए ताकि हम गाना प्लेलिस्ट में डाल सकें।

बाबुल फिल्म का गाना था, तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ें थी। हमने यही सवाल पूछा था, कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और कुछ श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था, किताबों में कोई नई रेसिपी आई तो मैं उसको काट कर डायरी में चिपका लेती थी, अगर नहीं काट पाती थी तो कॉपी पर लिख कर इसकी कटिंग करके चिपका लेती, यही मेरे पास आज भी धरोहर की तरह रखी हुई है। जब मैं ससुराल तो उसी कॉपी को ले गई, पापा चिढ़ाते थे, ये क्या रेसिपी पढ़ पढ़ कर खाना बनाओगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बाजार फिल्म के गीत की पंक्तियां बहुत पसंद है, गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी को देखेगा, और ये आज की इबारत से मैच भी कर रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो हमने भी चिपकाया था, पर रेखा के चित्र जहां भी कटिंग मिलती थी बस काटा और बायोलॉजी की फाइल में चिपका दिया, और उसे सजाया भी करते थे कलर के पेन से, कोई गोल कटिंग बीच में और चार साइड में, बहुत समय तक फाइल हमारे पास रही। क्या कभी आपने किसी कॉपी में जो छोटी सी नोटबुक हुआ करती थी उसमें एक तरफ फूल पत्ती ले आके चिपकाते थे और एक तरफ उसमें गानों के बोल लिखते थे, और कई बार संगीत की कॉपी में ऐसा बहुत किया जाता था जब वो आपको परीक्षा में वो कॉपी सबमिट करनी होती थी तो उसकी बड़ी सजावट होती थी। तो आप अपने यादें ताज़ा कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म है ये रात फिर ना आएगी। आपको बताना है कौन है पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। बात मिलने की है यहाँ पर, और आज की इबारत से कौन सा शब्द है जो इस गाने में आ रहा है, कौन से शब्द आपको पूछना है, हीरो हीरोइन का नाम।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, SH बिहारी के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन और कौन है हीरो, शर्मिला टैगोर और विश्वजीत। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम बड़ी खूबसूरत थी, जाने पहचाने रास्तों पर चलते हुए अचानक ही वही चेहरा सामने था, बरसों बाद मिले थे, मगर आँखों ने जैसे एक पल में सारी दूरी तय कर ली। उसके हाथ में वही डायरी थी, वही खामोश अफसाना जिसे कभी मेरी नजरों ने चुपके से पढ़ लिया था। उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही पुराना इंतजार था। एक श्रोता ने लिखा है कि वो डायरी थी मेरी, एक मेरी डायरी थी, फिल्मी गीत थे उसमें, और दूसरी डायरी थी जिसमें गजलें लिखती थी, और एकल गायक गायिका को एक रंग के पेन से और युगल स्वरों को दो रंग के पेन से, सामूहिक स्वरों को कई रंगों के पेन से लिखा करते थे। मुझे गीत, खासकर सभी पुराने गीत बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हुआ यूं कि हमें किसी की बात पर डांट पड़ी कि तुमने ये सही नहीं किया, और हम गुस्सा होकर बैठ गए, आंखों में आंसू भी आए। बुआ जी ने डांटा, उधर से पापा देख रहे थे और इशारे में कह रहे थे छोड़ो, ये सब बहन के सामने कह रहे थे, पर फिर हम चुप हो गए। मतलब आंखों की भाषा से इन्होंने समझ लिया। अब सवाल जवाब का सिलसिला, बताइए कब आप जरूरत से ज्यादा सवाल करते हैं, कब आप जवाब देने से कतराते हैं।

सिलसिला था। बताइए आप कब मतलब उम्र के किस पड़ाव में ज़्यादा सवाल किया करते थे? वैसे बच्चे बहुत सवाल करते हैं, लेकिन आप क्या सही तरीके से अपने बच्चों के जवाब देते हैं ये भी बताइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। हालांकि ये सवाल जवाब कुछ अलग तरह का था, एक हीरो हीरोइन के बीच सवाल जवाब का सिलसिला है। राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी, सभी श्रोताओं ने ये लिख डाला है जबकि मैंने पूछा नहीं था, तो इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया। और ये बात सही लिखी आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी डायरी 1978 से 82 तक लिखी हुई है, जब कॉलेज फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक के सफ़र में दिल दर्द दिल और आर्थिक दुर्दशा से भरी पड़ी है। कभी उठाकर स्याही से लिखा था, पढ़ता हूँ तो स्वयं पर हंसता हूँ। उम्र के एक पड़ाव पर आकर लगता है कि यह क्या नादानी थी, लेकिन वो बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपनी भावनाओं को कागज़ पर लिख डालते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है, इन शब्दों में से गीत आया फिर मिलोगे कभी। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बात चली है तो बता दूं कि किसी की आंखों में पल भर के लिए जो दर्द छलका था, उस दर्द को आज भी याद करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये रात फिर ना आएगी के बारे में जानकारी दी है। और सभी श्रोताओं ने लिखा है कि ससुराल फिल्म का गाना था। अब चलिए आगे बढ़ें और आपको पूछना है कौन है इसमें हीरोइन और कौन है हीरो। फिल्म है बहू बेगम, और आपने कब किसका इंतजार किया और वो आपके इंतजार के बाद भी नहीं आया या नहीं आई।

0: बहु बेगम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की ये आवाज़ों में साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। और अब प्रोग्राम के आखिर में पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, बूझिए आप कौन है इस फिल्म में कलाकार।
1: शम्मा जलती है जले, हाय हाय।

पेंगेस्ट फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। फिल्म में देव आनंद और नूतन होते हैं। इससे पहले जो गाना हमने सुनवाया था, हमने पूछा था कौन है कलाकार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार थे। अब आज का सुरीला सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 46वीं कड़ी।

0: 1942 के आंदोलन में देश में कई जगहों पर प्रति सरकारें स्थापित की गईं। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, एसएम जोशी, जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर आंदोलन को आगे जारी रखा। गुप्त रेडियो केंद्र शुरू किए गए। क्रांति सिंह नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकारें स्थापित की गईं। अब किसी भी परिस्थिति में अंत तक यह आंदोलन जारी रखना ही है। आंदोलनकारियों की इस जिद के कारण ब्रिटिश राज सत्ता को एक के बाद एक झटके लग रहे थे, परंतु जब राज सत्ता की रीढ़ ही सेना और राज सत्ता के विरुद्ध चली जाती है, तब सारे समीकरण बदल जाते हैं। आजाद हिंद सेना को आदर्श मानकर ब्रिटिश फौज के नौसेना और वायुसेना के भारतीय अधिकारियों ने हड़ताल का आह्वान किया। मुंबई बंदरगाह में खड़ी तलवार नामक युद्ध पोत पर से यूनियन जैक उतार दिया गया। नौसेना के अधिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ दिया। कई महत्वपूर्ण शहरों में वायुसेना के अधिकारी हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजों द्वारा कड़ी कार्रवाई की धमकी दिए जाने के बाद भी उन्होंने हड़ताल वापस नहीं ली। नाविक दल के इस संघर्ष में वंदे मातरम शब्द को युद्ध घोष का स्थान प्राप्त था। जिन भारतीय सैनिकों के बल पर अंग्रेजों ने राज चलाया था, उन्हीं भारतीय सैनिकों के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सत्ता को अंतिम और सबसे बड़ा झटका लगा।
1: दूसरे विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट में फंसा इंग्लैंड भारत में इन उग्र आंदोलनों के कारण पूरी तरह घिर गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने का समय बिल्कुल निकट आ गया, पर जाते जाते अंग्रेजों ने कुछ साल पहले जो फूट डालने की राजनीति की थी, उसके कटु परिणाम अब दिखने लगे थे। बैरिस्टर जिन्ना के दुराग्रह के कारण मुस्लिम

0: लीग और अन्य जातिवादी संगठनों की हिंसक कार्रवाइयों में भारत को खंडित स्वरूप में ही स्वतंत्रता मिलेगी, ये लगभग निश्चित हो गया था। बेशक 150 साल की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने का आनंद सबसे बड़ा था। 1875 में बंकिम चंद्र ने भारत माता को वंदे मातरम कहकर जो पुकार लगाई थी, वो आज इतने वर्षों बाद फलदायी हो रही थी। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ऐसे नारे लगाते हुए बलिदान देने वाले, शहादत को गले लगाने वाले युवाओं का या वंदे मातरम कहते हुए असहनीय अत्याचार सहने वाले सत्याग्रहियों का स्वतंत्र भारत का सपना आज साकार हो रहा था।
1: कुल मिलाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अधिकांश घटनाएं वंदे मातरम की साक्षी में ही घटी हैं। वंदे मातरम, इन शब्दों के बिना मानो इस आंदोलन की किसी भी हलचल को पूर्णता मिलना असंभव था। संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम के इस तेजस्वी मंत्र का संबल मिला। मैं माता को वंदन करता हूं, इतना सरल अर्थ वाले इन शब्दों से अंग्रेजों को इतना डर क्यों लगता था? उन पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते थे? उन शब्दों का उच्चारण करने वालों पर लाठी डंडों के साथ बंदूक की गोलियां भी क्यों चलाई जाती थीं? अंग्रेजी राज सत्ता के मन में इतना भय पैदा करने वाली ऐसी कौन सी भावना वंदे मातरम शब्द में छिपी हुई थी?
0: वंदे मातरम, इस शब्द में है धधकती राष्ट्र भावना, इन शब्दों में है मातृभूमि के प्रति ज्वलंत निष्ठा, इन शब्दों में है मातृभूमि के चरणों में लीन होने की शरण भावना, इन शब्दों में है खड्ग की शक्ति।
1: अगस्त 1947 को हमारी मातृभूमि पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। स्वतंत्रता की पहली किरण के साथ दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की आवाज में वंदे मातरम पूरे देश भर में सुनाया जा रहा था, और उसी समय मुंबई आकाशवाणी केंद्र से किराना घराने की प्रतिभावान गायिका का दिव्य स्वर गूंज रहा था। गान हीरा हीराबाई बड़ोदेकर अपने मधुर स्वरों में तिलक कामोद राग में स्वयं तैयार की हुई रचना में वंदे मातरम प्रस्तुत कर रही थी।

0: 15 अगस्त 1947 क्रांतिकारी अरविंद घोष अब योगी श्री अरविंद बन चुके थे। आज उनका जन्मदिन था। आज उनके 75वें जन्मदिवस पर उन्हें अपनी भारत माता के स्वतंत्र होने का सपना साकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1910 के बाद श्री अरविंद क्रांतिकारी कार्यों से योग मार्ग की ओर मुड़ गए थे। फिर भी वंदे मातरम के वे सच्चे अर्थों में प्रवर्तक थे। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा, पर उसका आशय, उसका महत्व, उसकी चिंगारी भारतीय जनता के मन में पहली बार जगाई होगी तो वो श्री अरविंद ने। वंदे मातरम के दो अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किए ही थे। उसके साथ ही बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने शुरू किया, परंतु कारावास के कारण उसमें बाधा आ गई और वो अनुवाद उनके क्रांतिकारी भाई बारिंद्र नाथ घोष ने पूरा किया। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम और आनंद मठ की प्रेरणा से श्री अरविंद ने भवानी मंदिर की परिकल्पना की थी। भवानी मंदिर, ये संकल्पना उन्होंने लेख के रूप में युवाओं के सामने रखी और वो आध्यात्मनिष्ठ राष्ट्रवादियों के लिए गीता बन गई। श्री अरविंद ने भवानी भारती इस लेख में राष्ट्र के विषय में जो संकल्पित किया उसे स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं,
1: ये देश जड़ भू प्रदेश नहीं है, वो भगवती शक्ति की प्रतिमा है। पहले की महिषासुर मर्दिनी आज भारत भवानी बन गई है। उसके लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले उसके पुत्रों को उसका अभिषेक करने के लिए आगे आना चाहिए। भवानी मंदिर बनाने के लिए ईंट पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीयता की भक्ति भावना से आकार लेने वाला वो मानस मंदिर होगा।
0: भवानी मंदिर की उनकी परिकल्पना यदि प्रत्यक्ष रूप में साकार हुई होती तो भारतीय सशस्त्र संघर्ष को एक संगठित स्वरूप प्राप्त हो जाता। बंकिम चंद्र के आनंद मठ उपन्यास में सन्यासियों की राष्ट्र भावना से समानता रखने वाला विन्यास इस लेख में है। भवानी मंदिर इस संकल्पना के पूरक के रूप में भवानी भारती नाम से श्री अरविंद ने संस्कृत भाषा में 99 श्लोक लिखकर आदिशक्ति से आर्त प्रार्थना की। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों के देवी महात्म्य में महिषासुर वध के रूपक को श्री अरविंद ने अंग्रेज रूपी असुर का कालिका माता के स्वरूप वाली भारत माता वध करती है ऐसी कल्पना करते हुए प्रस्तुत किया। इन 99 श्लोकों के अंत में समापन करते हुए अंतिम दो चरणों में वे भारत माता को संबोधित करते हुए कहते हैं,

इसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अनंत रूप धारण करने वाली, प्रीति, दया, धैर्य, अदम्य शौर्य, श्रद्धा, तितिक्षा और विविध विद्याएं, ये सब तू ही है। हे आर्य, प्रसन्न हो और भारतीयों के हृदय में चिरकाल तक निवास कर। हे प्रचंड तेज पुंज प्रतिमा के समान देवी, अपनी शुभ्र कांति से सागरों और पर्वत शिखरों को प्रकाशित करती हुई स्थिर होकर प्रसन्नता पूर्वक जगत के कल्याण के लिए तू आर्य भूमि में अर्थात हमारे भारतवर्ष में चिरकाल तक निवास कर।

0: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम एक जय घोष, ये थी इस लघु रूपक श्रृंखला।

की 46वीं कड़ी मूल मराठी संहिता मिलन सबनिस हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90

0: देश सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ड्रोन नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है, जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
1: फुल ऑपरेशन क्लीयरेंस प्राप्त LCA तेजस, HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक

0: सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
2: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
3: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गाँव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
4: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गाँव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
1: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर

0: दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की योना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC-Tejas और ST-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: 12 o'clock फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई ओपी नेगर ने।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर

0: गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाजों में ये था शैलेंद्र का लिखा गाना, संगीत मुकुल रॉय का था और फिल्म थी डिटेक्टिव।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हमसाया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। शिवन रिज़वी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर
2: मार उड़ानी के मार उड़ानी।
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
0: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
3: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी, वक्त के साथ तो रिश्ते भी

0: बदल जाते हैं। दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: गुमराह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अनुभव फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। कपिल कुमार के बोल थे, कनु रॉय का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते। तो बताइए, आप जरा पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: जी, मेरा नाम कल्पना मनोर है और मैं भूलीगांव से बोल रही हूँ,
0: अच्छा,
1: वाशिम से। हाँ
0: वाशिम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बताइए, आप क्या करती हैं कल्पना?
1: जी, मैं आंगनवाड़ी मदद हूँ।
0: अरे वाह, आंगनवाड़ी में आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि आपका जो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कार्यक्रम है विविध भारती में, वो कौन सा है?
1: ये वो हेलो पिटारा, हेलो फरमाइश, आज के फनकार, और सब
0: अच्छा
1: मैं रेडियो पे सुनती हूँ।
0: अच्छा ये सारी चीजें आपको सुननी अच्छी लगती हैं ना?
1: हाँ सब।
0: तो और क्या करना अच्छा लगता है रेडियो सुनने के अलावा आपको?
1: कि मुझे बच्चों को पढ़ाना और
0: यानी
1: ड्राइंग
0: हाँ,
1: करना।
0: अच्छा आप आंगनवाड़ी में काम करती तो आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हैं?
1: हाँ, मेरा बच्चा भी है ना, 6 साल का, मेरे साथ ही पढ़ता है।
0: अच्छा, तो आप उसको भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और
1: हाँ,
0: आज कौन सा आप गीत सुनना चाहेंगी आप हमें बताइए।
1: तारों का चमकता चेहरा हो,
0: तो
1: फूलों
0: ये
1: की
0: गीत,
1: हंसने की वादी हो।
0: अच्छा तो ठीक है, हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए कौन बोल रही हैं आप और कौन से शहर से बोल रही
1: हैं? जी मैम नमस्ते, मैं कानपुर कल्याणपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: अच्छा आप क्या करती हैं आप?
1: जी मैम मैं जॉब ही करती हूँ, मेरा बुटीक है खुद का।
0: अरे वाह।
1: जी मैम तो मेरा सारा समय उसी में बीतता है और मैं आपका कार्यक्रम मैम बहुत मतलब मन लगा के सुनती हूँ।
0: अच्छा मन लगा
1: अपने काम के जैसे अपने काम में मन लगा के सुनते करते हैं वैसे ही आपका प्रोग्राम भी मन लगा के सुनते, इतना अच्छा लगता है। हेलो सहेली और गीत माला ये सब तो मेरे बहुत ही मतलब पसंदीदा, हम भूल नहीं सकते समय की, ये समय मतलब चालू हो गया तो बस रेडियो चालू होना चाहिए।
0: ये तो सही बात है। और दूसरी चीज ये बताइए आप जो करती हैं, आपका ये जो बुटीक चलाती हैं तो उसमें आप मतलब किस तरीके के कपड़े रखती हैं? सलवार
1: जी मैं लेडीज। हाँ मैम जी मैं लेडीज कपड़े तैयार करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो आजकल तरह तरह के कपड़े ट्रेंड में है, जैसे गाउन भी चल रहे हैं तरह तरह के, है ना? और तो चल ही रहे हैं, प्लाजो वगैरह काफी चल रहे हैं ना?
1: हाँ प्लाजो भी चल रहे, गाउन भी चल रहे, शरारा भी चल रहा है।
0: तो सबसे ज्यादा कौन सा आपको बनाने के लिए मतलब आता है आपके पास ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा कौन सा?
1: मैम इस समय तो सब लोग पैंटी सूट पहन रहे हैं ज्यादा, और साड़ी की जो ड्रेसें आ रही हैं तो साड़ी की ड्रेसें उनको जो पसंद आता है वो अपने हिसाब से सिलवाते रहते हैं।
0: हाँ आजकल ये भी ट्रेंड में ना कि जो पुरानी आपकी बनारसी तरीके की जो साड़ियाँ हैं उसके नए नए तरीके से आप शरारे बना सकते हैं ना, या आप?
1: हाँ बहुत अच्छी सी ड्रेसें आ रही हैं तो वो साड़ी से लेडीज से आजकल अपनी जो साड़ी पुरानी रखी हुई है बनारसी तो उनसे काफी अच्छी अच्छी ड्रेसें तैयार करवा रही है।
0: बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही है। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: तो मैम प्रेम पुजारी का गाना है रंगीला रे तेरे रंग में।
0: अरे वाह बहुत प्यारा सा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आज हम कौन सी सखी से बात कर रहे हैं?
1: हम परजाना सखी से बोलते हैं, ऊन पतिया, गुजरात सूरत।
0: अरे वाह, तो बताइए फरजाना जी, आप क्या करती हैं?
1: हम घर में ही है, दो बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी हो गई, एक बेटी को दो बेटी है।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और एक बेटी को एक बेटा और बेटी है।
0: यानी आपने अपने कर्तव्य कर लिए हैं पूरे, अब आप आराम से है ना, रेडियो सेट के पास बैठ के गीत सुन सकते हैं ना।
1: हाँ, बेटे की शादी हुई है, अभी 5 महीना खत्म हुआ, 6ठा महीना चालू है।
0: अरे वाह, यानी कि बेटे की भी शादी हो गई, यानी आप घर में बहू भी लेकर आ गई अब, है ना?
1: हाँ, बहू भी MP से लाए, मध्य प्रदेश से, यहाँ बुरहानपुर से।
0: आप एक सास के रोल में आ गई हैं।
1: चंदन का नाम, उनका नाम भी फिरोजा है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और मेरी बेटी सायरा और सबाना।
0: हाँ, बहुत अच्छा।
1: और बहू है तो नीलोफर और बेटा है तो सब्बीर।
0: अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: प्यासा सावन का तेरा साथ है तो।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गाना है, मुझे भी सुनना है।
1: क्योंकि मेरी बेटी है ना बिछली, उनको बहुत पसंद है।
0: अच्छा, अरे
1: वो मोबाइल में रखेगी ना, वही गाना रखेगी, उनके पापा के लिए भी, मेरे लिए भी अच्छा लगता है उसको।
0: है? अरे वाह, बहुत अच्छी बेटी है आपकी। तो चलिए, आपके साथ साथ मैं भी सुन लेती हूँ ये गीत, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं शानू बोल रही हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा शानू जी, आप भोपाल से बोल रही हैं यानी कि आप मध्य प्रदेश से बोल रही हैं। तो बताइए क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ये आप मुझे बता दीजिए।
1: जी मुझे, मैं तो घर में ही रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ और बच्चे, बस खाना बनाना यही पसंद है और विविध भारती सुनना मुझे बहुत पसंद है।
0: विविध भारती, विविध भारती पे आपको कौन सा कार्यक्रम है जो बहुत ज्यादा पसंद है?
1: मुझे तो सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आज की फनकार बहुत अच्छा लगता है, आज के मेहमान, पिटारा के अंतर्गत सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सखी सहेली हेलो सहेली भी पसंद है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको पसंद है। अब ये बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरे दो बच्चे तो बड़े हैं और एक थोड़ा लेट हुआ था तो वो 4 साल का है अभी। और हम अपनी बात भी कहना चाहेंगे विविध भारती, जैसे हमें सबकी आवाजें पसंद है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना मुझे रफी साहब की आवाज में सुनना है, रूप तेरा मस्ताना फिल्म का, बड़े बेवफा हैं ये हंसने वाले।
0: अरे क्या बात है, ठीक है आपकी पसंद का हम ये गीत आपको सुनवा देते हैं।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कौन व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं, यानी आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए। नमस्ते। तो कौन सखी बोल रही है हमारी?
1: जी मेरा नाम प्रमिला खन्ना है।
0: अच्छा प्रमिला खन्ना जी।
1: जी मैं हरियाणा से बोल रही हूँ।
0: अच्छा हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं प्रमिला जी?
1: जी मैं सिलाई करती हूँ।
0: अच्छा तो बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मेरे हस्बैंड है और मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है।
0: अच्छा बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: जी लड़की 13 साल की है, लड़का 11 साल का।
0: अच्छा यानी बच्चे भी छोटे ही हैं। तो उनके साथ में थोड़ी सी बहुत रहती होगी ना कि उनको भी संभालना, घर को भी संभालना और साथ में सिलाई का काम भी करना।
1: जी
0: सब कुछ संभाल लेती हैं आप?
1: वैसे तो बच्चे स्कूल में जाने के बाद फिर तो मैं खाली ही रहती हूँ, तो मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मुझे सोनू मजवाल फिल्म का गाना सुनना है।
0: अच्छा बिल्कुल हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: अरे मैम नमस्कार, मैं संभाजी नगर से बात कर रही हूँ, निर्मला कर रहे।
0: अच्छा, आप छत्रपति संभाजी नगर से बोल रही हैं निर्मला जी?
1: गाने बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं हमारे।
0: आपको गाने अच्छे लगते हैं सुनने?
1: बहुत अच्छे लगते हैं
0: तो जो भी कार्यक्रम आते हैं उसमें आपको जो भी गाने सुनवाए जाते हैं सब पसंद है ना आपको? तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गणपति जी का कौन सा गाना सुनाने वाली?
0: तो ठीक है, हम ये प्यारा सा गीत सुनवाते हैं गणपति जी का।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आप कौन बोल रही हैं, पहले तो ये बताइए।
1: मैं साची सूरज चेल्लारे बोल रही हूँ।
0: अच्छा, और कहाँ से बोल रही हैं?
1: और यवतमाल से।
0: यवतमाल से। साची, आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है ना कि आवाज एक छोटी सी बच्ची की है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
1: हाँ।
0: तो बताइए, आप पढ़ती हैं?
1: हाँ।
0: तो आप कौन सी क्लास में?
1: छठी क्लास में।
0: सिक्स्थ में? अभी आप छठी क्लास में, यानी कि आप बहुत छोटी सी हैं। आपको रेडियो सुनना
1: हाँ,
0: अच्छा लगता है?
1: हाँ।
0: तो आप रेडियो पे क्या क्या सुनती हैं?
1: मम्मी के साथ सुनती हूँ।
0: मम्मी के साथ सुनती हैं। क्या सुनना अच्छा लगता है? वही जो मम्मी सुनती हैं, या आपको भी कोई अच्छा लगता है प्रोग्राम सुनना?
1: सखी सहेली भी बहुत अच्छा होता है।
0: सखी सहेली अच्छा लगता है आपको? जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं।
1: बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं उसमें।
0: बातें करनी अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ।
0: अच्छा, यानी कि सांची भी अच्छी अच्छी सी बातें करती है ना?
1: हाँ।
0: तो आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं स्कूल में?
1: हाँ।
0: मुझे लग ही रहा था कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी। और आपको क्या करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है कि डांस करना अच्छा लगता है?
1: मुझको गाना
0: गाना अच्छा लगता है। तो चलिए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं ये तो बताएंगी?
1: आपके मन से कोई भी।
0: ठीक है, फिर मैं अपने मन से सुनवाती हूँ सांची के लिए खास तौर पर ये गीत, अच्छा लगेगा सांची को।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: चक बक चक बक।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए, आप
1: जी
0: कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रही हूँ, कश्मीर से मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम अफरोजा है।
0: अच्छा, अफरोजा जी आप बोल रही हैं कश्मीर से। बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही
1: जी
0: अच्छी जगह से आप बोल रही हैं। बहुत अच्छी जगह सच में। तो बताइए आप क्या करती हैं अफरोजा जी?
1: जी बस मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का ही काम करती हूँ।
0: हाँ,
1: दो बच्चे हैं मेरे, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ,
0: अच्छा तो बच्चे छोटे हैं?
1: और साथ साथ विविध भारती चलता रहता है। कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से।
0: ये तो सबसे अच्छी बात है आपकी। तो बताइए आपके बच्चे छोटे
1: जी
0: हैं कि बड़े?
1: मेरी 5 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है।
0: मतलब बहुत परेशान करते होंगे, शैतानी करते रहते होंगे पूरे दिन घर में, है ना?
1: हाँ, अब क्या करें, लेडीज का काम ही यही है, अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना,
0: बिल्कुल, अच्छे से उनको पढ़ाना
1: घर
0: लिखाना,
1: संभालना।
0: घर संभालना, सच में।
1: जी
0: और बहुत बड़ा काम है ये। मतलब आप जॉब करने जाते
1: बहुत ही,
0: हैं, लोगों को
1: हाँ,
0: लगता है
1: और
0: वही चीज बड़ी है।
1: ये काम नजर भी नहीं आता है।
0: जबकि
1: अगर ऐसे
0: सबसे
1: जैसे
0: जरूरी काम है।
1: कि हाँ, अगर कि मर्द लोग जैसे काम करते हैं, उनका काम दिख जाता है, वो ऑफिस संभालते हैं, फिर पता चलता ही नहीं ऑफिस है। घर में जितने काम करेंगे ये नजर ही नहीं आते हैं।
0: ऊपर से कहा जाता है आप करते ही क्या है घर पे, जबकि
1: जी
0: अगर घर पे काम करना पड़ जाए ना तो बस पता चल जाएगा कितना काम होता है दिन भर का पूरा, और साथ ही
1: बहुत
0: बच्चों को भी
1: ज्यादा मैम।
0: संभालना ना, बहुत बहुत बड़ा काम है
1: हाँ
0: ये। आप विविध भारती आप सुनती हैं, तो विविध भारती का कम से कम इतना तो एक योगदान रहता होगा ना कि आपका जो काम है पूरे दिन भर का थोड़ा आसान कर देता होगा, है ना?
1: बहुत ज्यादा, कई सालों से वही मैं बोल रही हूँ, कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जब शादी से पहले मायके में सुना करती थी,
0: अच्छा,
1: एक भी प्रोग्राम मिस नहीं होता मुझसे। सखी सहेली है, हर कोई एपिसोड सुनती थी मैं, या
0: अरे वाह।
1: पिटारा में जो भी एपिसोड आते हैं, हर कोई प्रोग्राम सुनती थी मैं विविध भारती का।
0: ये तो
1: अभी भी
0: बहुत,
1: सुनती हूँ, लेकिन अब उतना टाइम ज्यादातर नहीं आता है, क्योंकि बच्चे कभी इधर उधर
0: हाँ
1: भाग दौड़ में
0: नहीं,
1: लगा
0: बच्चे छोटे
1: देते
0: हैं
1: हैं।
0: आपने बताया, 5 साल के 2 साल के तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो पूरा वक्त देना पड़ता होगा आपको अपना,
1: बहुत
0: सच में।
1: ज्यादा, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि विविध भारती आज हेलो सैली में मेरा पहली बार फोन लगा है, इतने सालों से, मेरे
0: हाँ,
1: ख्याल से 20 सालों से,
0: अरे
1: 20 साल के बाद फोन लगा है इस प्रोग्राम
0: क्या
1: में।
0: बात कर रही
1: एक बार
0: हैं।
1: विविध भारती में मैंने बात की है, वो है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा यानी कि आपकी, चलो
1: हाँ
0: बात तो हुई, मुझे ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कम से कम, क्योंकि 20 साल इतना लंबा अरसा आपने
1: हाँ
0: सोचिए
1: बहुत
0: लगाया है
1: ज्यादा
0: फोन
1: टाइम है।
0: नहीं सच में, सच में आप बहुत ही अच्छी हमारी श्रोता हैं, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इतना आपने इंतजार किया कॉल लगाने के लिए, तो बहुत बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी गाने के बोल है, इस मोड़ से जाते हैं,
0: हाय
1: कुछ उस
0: हाय क्या
1: पर
0: बात है,
1: कदम रहा है।
0: बहुत बहुत सुंदर,
1: हाँ
0: बहुत सुंदर गीत है ना। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हुए काश कभी हम आपसे मिल लें हमारी मुलाकात हो जाए, है ना?
1: हाँ आप
0: चलिए
1: आइए
0: सुन
1: ना कश्मीर, हमसे
0: बिल्कुल
1: मिलके
0: बिल्कुल
1: जाइए,
0: बिल्कुल, कभी
1: आप
0: आते हैं
1: आइए और सिर्फ देख रहे, कितनी सुंदर जगह है, हर
0: सच
1: मौसम यहाँ बढ़िया से बढ़िया है।
0: नहीं, कश्मीर का तो खैर नाम ही काफी है। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी
1: हाँ
0: पसंद का एक प्यारा सा ये गीत, जो मुझे भी बहुत पसंद है।

आभामंडल विशाल होता था। आभामंडल का विशालता भी एकांत के समानुपात में हुआ करती थी। भीड़ में रहने वाले व्यक्ति की मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं क्षीण होती रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। लगातार बढ़ते कंपटीशन के दौर में समय के साथ चलना मुश्किल तो है, लेकिन बेहद ज़रूरी भी, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारा सफलता और असफलता इसी पर टिकी होती है। टाइम को सही तरह से मैनेज न करने वाले के साथ ऐसा दिक्कतें आती है। तो निर्धारित समय में कैसा क्वालिटी वर्क किया जाए और अपने लिए कैसा समय बचाए, किसी भी काम की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। ऑफिस हो या घर पर, जरूरी कामों के लिस्ट बनाएं। काम को 3-4 शिफ्ट्स में करें। जैसे जैसे काम पूरा होता जाए लिस्ट से उसे क्रॉस करते जाए, जिससे पता रहे कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। दोस्तों, अपने लिए क्वालिटी समय बचाएं। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद से समय बिता सकते हैं। सत्संग एकांत से भी श्रेष्ठ। एकांत तभी फलदायी होगा यदि व्यक्ति का आत्मज्ञान पर्याप्त हो। सभी को सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे सहायक की आवश्यकता, आजीवन वे सदैव बनी रहती है। सत्संग का मतलब पंडाल लगाकर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के पास जाना न समझे। लाइक माइंडेड पीपल के साथ बिताना या जो आपको एंकरेज करे, ऐसे लोगों के साथ रहना। चाहे जितने भी लोग हो दोस्तों, अपने लिए कुछ समय निकाले और अपने बारे में जाने। With this, we come to the end of today's Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। I repeat 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम पिटारा, गीतों भरी कहानी।
1: और वो अपने घर उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन मायूस हो गया। आखिर ओमी के बिना ये आजादी किस काम की? आएगा ओमी, आज जरूर आएगा। आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा? अच्छा चलो, बाजार से कुछ सब्जी भाजी खरीद ले आता हूँ। हाँ, आज अपनी पसंद की सब्जियां लाऊंगा। रोज रोज घी आ कद्दू खा खा कर रुकता चुका हूँ। और हाँ, नया बल्ब भी तो लाना है। ओमी जरूर कहीं दूर से इस घर पर नजर रखता होगा, जलती बत्ती देखकर दौड़ा चला आएगा। हाँ, उसे क्या मालूम कि मैं समय से पहले ही रिहा हो गया हूँ। जरूरत का सामान खरीद कर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बड़े चाव से सब्जी बनाई। गोल गोल नरम नरम रोटियां सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहाँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजायाफ्ता से कौन बात करना चाहेगा? लोग उसे नहीं पहचानते अब, ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पी कर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात।

ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव, सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूँ मेरी आवाज उस तक पहुंचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे, आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी, मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए, आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था। जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था। उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज

सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार गीत ने मंच पर ही नहीं मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूँ तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी सुर और शब्द की, आवाज और अर्थ की।

और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती। गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है। मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था। वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक चनकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था। ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर। दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग। दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे मीठे मीठे सुर में।

की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहाँ होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहां आना कम हो गया होगा। क्या पता कहीं कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूं। काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहाँ है, क्या पता। कब से उससे बात नहीं हुई, हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिखकर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर

0: और हीरो भी मैरी।
1: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे। कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को पुकार रहा था।

एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका।

वह सोच की सुरंग में गहरे जाग घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा? वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर डालेगा, तांडव मचा देगा। उसने बिना एक पल गंवाए ओमी से पहले खुद वो पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली और ओमी को गीत का ध्यान रखने का इशारा किया, जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये कल बीत कर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।

वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़ कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तो गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है, पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है। जाने।

हर रात यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती है। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उससे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखेगा। वह ये सब कतई दोहराना नहीं चाहता, वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, 100% ओमी की। ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा, मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो बत्ती जला रखी थी मैंने। हाँ, मगर कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोहर लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया। आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकरा कर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी ओमी ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यही कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी? ओमी कहाँ है तू? कहाँ छिपा है ओमी? देख, सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहां भी कोई नहीं था। कुछ पल को मायूस तो हुआ, मगर फिर अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा। अरे, आवाज तो उधर खिड़की की तरफ से आ रही थी और मैं यहाँ दरवाजा खोलने आ गया। वो खुद पर ही हंसने लगा और दौड़कर घर के पिछवाड़े में बगीचे की तरफ दौड़ा। उसके भीतर का कौतूहल देखते ही बनता है। जिस पल का वो इतनी रातों तक जगकर इंतजार करता रहा, आखिर वो सफल हुआ। हड़बड़ी के बावजूद वो दबे पांव घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ता है। बेतरतीब लताओं का जाल उसे किसी जासूसी फिल्म का आभास दे रहा है। अंधेरे उजाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी ओमी ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज

0: आवाज में पुकारता है,
1: ओमी,
0: सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है। उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो धूप की तेज किरण आंखों पर पड़ रही थी। वो बहुत व्याकुल था। अब वह और सब्र नहीं कर सकता था। उसे ओमी को खोजना ही था और ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था। उसे किसी के मदद की जरूरत थी। वो उठकर पड़ोस में जाने को बढ़ा। हाँ, हो न हो वे जरूर बता पाएंगे कि मेरे पीछे यहाँ कोई कभी आया था और वो कहाँ रहता है। मैं जाकर पड़ोस में पूछ लेता हूँ। मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो ठिठक गया। किसी ने चेताया कि अब वो क्या करने जा रहा है। वो सोचने लगा कि पड़ोसी को अपने बारे में क्या बताएगा, और ये भी कि वो इतने सालों तक कहाँ रहा और आज अचानक कैसे आ गया, और ओमी को क्यों ढूंढ रहा है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। ये जानकर पास पड़ोस के लोग पता नहीं उसके साथ कैसे पेश आए। हो सकता है उससे डरने लगे, अपने बच्चों को भी उससे बचकर रहने की हिदायत दे डाले। ऐसे में उसकी सहायता कौन करता। वो बहुत असहाय हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि जेलर साहब उसे बहुत मानते थे। वो जेलर साहब की ओर जाने को लपका। सोचने लगा, क्यों ना जेलर साहब से ही मदद ले लूं। हाँ, उनकी वजह से ही तो मेरी सजा 2 साल कम हो गई और मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया। हाँ, वो बहुत समझदार हैं, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, जेलर साहब के पास जाता हूँ, वहीं जाता हूँ मैं। वो सोचता है कि जेलर साहब कितने भले और मददगार हैं, वे जरूर उसकी सहायता करेंगे। वह याद करता है कि बिना उसके कुछ कहे ही जेलर साहब ने उसकी फाइल मंगाई थी और उसकी रिहाई के लिए अपील की थी।

जेलर साहब भी एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो अपने मन की बात कह सकता था और वही कोई रास्ता भी सुझा सकते थे। बस फिर क्या था, वो जल्दी से तैयार होकर जेल की तरफ निकल पड़ा।

क्या हुआ, घर में मन नहीं लगा? जेलर साहब ने पूछा। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए बेचैनी भरे स्वर में कहता है, साहब ओमी से मिलवा दो ना। ठीक है मिलवा देंगे, पर ये ओमी है कौन? साहब जी वो मेरे साथ ही रहता था, बहुत अच्छा गाता था, अरसा हो गया उसकी आवाज सुने। वो मेरे साथ यहां भी आया था मुझे जेल तक छोड़ने। उसने वादा किया था साहब कि वो मेरे घर का ध्यान रखेगा। जेलर साहब सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है, क्योंकि उनके रहते तो कभी कोई इससे मिलने आया नहीं। खैर जब ये जेलर साहब इस जेल में आए, तब अन्य मुजरिमों की तरह इसकी भी पिछली कहानी से जेलर साहब पूरी तरह नावाकिफ थे। हाँ उसके स्वभाव की नरमी से जरूर जेलर साहब को प्रभावित किया था और उन्होंने उसकी समय पूर्व रिहाई की अपील भी लगाई थी। अपील करते समय ही उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और जाना था कि हत्या के जुर्म की सजा भुगत रहा है। उन्हें तब भी विश्वास न हुआ था कि ये व्यक्ति किसी का कत्ल कर सकता है। खैर जेलर साहब ने अर्दली से कहकर उसकी फाइल मंगवाई थी कि शायद उसमें ओमी का कुछ पता ठिकाना मिल सके। अर्दली फाइल लाकर देता है, जेलर साहब उसकी फाइल पलटते हैं कि अचानक खट से एक तस्वीर फाइल से नीचे गिरती है। जेलर साहब से पहले वो लपक कर तस्वीर उठा लेता है और चहक उठता है, साहब जी साहब जी साहब जी यही तो है ओमी। हाँ साहब जी यही है ओमी, इसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसके बिना मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है साहब जी। इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो। जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है

इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा। वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख। जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे, सारा रहस्य खुलता जा रहा था। जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी, ये वही तस्वीर थी। यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था। जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की खासियत थी, जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं, खुद ही था ओमी। जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था, कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता, आवाज के आरोह अवरोह पर झूमता ओमी एक जिंदा दिल इंसान था। उसके दिलकश आवाज को सुनने भीड़ उमड़ आती थी। ओमी ओमी ओमी ओमी, हर तरफ उसके नाम की धूम मची रहती थी। ऐसे ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपने प्रतिद्वंदी मोहित बैंड के लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ। हाथापाई, जानलेवा हमला, जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई। उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया। ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था। जेलर साहब समझ रहे थे कि ओमी यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी। जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा। यही उसकी दुनिया थी। मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई, तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया। वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा। उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए। उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया। उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई। जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था। कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को, जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था। चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी। हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं। उसमें न तो किसी तरह की जिद थी, न उत्तेजना। कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानी में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी। सुना तुमने? समझे कुछ? तुम ही हो वो ओमी। जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूझ सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी

वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बड़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा।

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राग।

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर कुछ ही पलों में आप मुंबई से मराठी में समाचार सुनेंगे।

न जाने तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है कि एक बार नजर मिली तो दिल वहीं ठहर गया। अब यौवन भी जैसे तुम्हारे ख्यालों में ही बीत रहा है और दिल हर पल तुम्हें ही पुकार रहा है। तुम्हारी चाहत में ऐसी तड़प है कि चैन भी रूठ गया है। आलम यह है कि अब इस भीड़ में कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि तुमसे नैन जो लड़ गए हैं तो दिल भी बस तुम्हारा हो गया है।

अगर जीवन एक बगिया है तो हमारे रिश्ते उसमें खिलते अलग अलग फूल। कुछ फूल खुशियों की खुशबू देते हैं तो कुछ अनुभवों के रंग भरते हैं। कभी मौसम सुहाना होता है तो कभी आंधियां भी आती हैं, क्योंकि जीवन की खूबसूरती इस बात में नहीं कि हर मौसम अच्छा हो, बल्कि इसमें है कि हम हर मौसम में खिलना सीखें।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। हर बात पर रूठना, मनाना और छोटी छोटी बातों पर तकरार करना छोड़ दीजिए। जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, इसे शिकवों में क्यों गुजारना। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराइए, दिल की बातें कीजिए, कभी प्यार से हाल पूछिए, कभी बिना किसी वजह के अपने होने का एहसास दीजिए। क्यों ना आज तकरार छोड़कर बस प्यार की बातें की जाए।

जहां खुशियां और सुकून एक दूसरे से मिलते हैं। इस दुनिया में ना कोई दौलत बड़ी होती है, ना कोई महल, बस साथ और अपनापन ही काफी होता है। हर पल खास लगता है जब उसमें अपने हम सफर का साथ होता है। इसलिए प्रेम की इस खूबसूरत रियासत में प्रेमी खुद को राजा और अपनी प्रेमिका को रानी समझता है।

रात की खामोशी में एक लड़की चांद से पूछती है, आज फिर मेरी आंखों से नींद क्यों रूठ गई? क्या तुमने उसे कहीं छुपा लिया है?

चांद भी जैसे उसकी बेचैनी समझकर मुस्कुरा देता है। शायद नींद किसी ने चुराई नहीं, बस किसी की याद ने उसकी पलकों पर डेरा डाल लिया है। और अब चांद से यही सवाल है, बताओ हमारी नींद किसने चुराई?

आज के चाय गीत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने

0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से ये गीत। फिल्म का नाम है मासूम, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार गुलजार साहब और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

ये आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था मासूम। आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, स्वर किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी।

0: आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ये गीत सुना। स्वर अलका याग्निक और साथियों के थे। फिल्म का नाम था जानवर।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन का संगीत, अमित खन्ना के बोल, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम स्वामी।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म स्वामी का ये गीत सुना। गीतकार थे अमित खन्ना और संगीतकार थे राजेश रोशन।

मनीष रेशमिया के संगीत निर्देशन में हम आपको जलीस शेरवानी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार अलका याग्निक, उदित नारायण और साथी ये फिल्म है हेलो ब्रदर।

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है 102.8 FM और न्यूज जोन AIR ऐप पर। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया।

0: दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर के छात्र अब चिप्स डिजाइन और टेप आउट कर रहे हैं। लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास उद्योग स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी के भंडारण की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग सुनिए। ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम हरजाई, गीतकार निदा फाजली और संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रसून जोशी का लिखा हुआ, विशाल खुराना का संगीतबद्ध किया हुआ है। इसे आवाज सुनिधि चौहान ने दी है। फिल्म का नाम है नीरजा।

कुमार सानू की आवाज में अभी आपने फिल्म आशिकी का ये गीत सुना। गीतकार समीर थे और संगीतकार नदीम श्रवण थे। इससे पहले आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज, फिल्म का नाम अर्थ, इफ्तिखार की ये गजल थी और कुलदीप सिंह का संगीत था।

0: ये आवाजें लता मंगेशकर और जॉली मुखर्जी की थी। फिल्म का नाम था आईना। गीतकार समीर थे और संगीत दिया था दिलीप सेन, समीर सेन ने। इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद में यानी 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता, फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला संध्या 7:00। संध्या 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिएगा अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत, इसका भाग 11 प्रसारित होगा। प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान। रात्रि 8:00 सुनिएगा हवा महल, बीवी ब्यूटी क्वीन, लेखक शरद सिंह और निर्देशक अजीमुद्दीन। चित्रलोक का प्रसारण समय रात्रि 8:15 और रात्रि 9:00 आप सुनते हैं फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शबाना आजमी पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले और प्रसारण समय रात्रि 9:30। रात्रि 10:00 सुनिएगा छाया गीत, आलेख और स्वर अनुराधा उपाध्याय का, प्रस्तुतकर्ता होंगे राघवेंद्र सिंह नेगी। रात्रि 10:30 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11:00 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। वंदनवार और चिंतन कल सुबह 6:05 पर, 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 316। संगीत सरिता कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 और कल संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 4। कलाकार डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। कल सुबह 7:00 हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय कल सुबह 8:15 और दोपहर 2:00 आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 8:30 और कल रात्रि 8:15 पर और आज के फनकार कार्यक्रम में कल सुबह 9:30 पर हम गायक जुबिन गर्ग के बारे में आपको जानकारी देंगे।

इसी कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर। पिटारा कार्यक्रम कल सुबह 10:00, इसमें सुनिएगा कहानी रिहाई, लेखिका अलका सिन्हा, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। कल दिन में 11:30 पर सुनिएगा मैटिनी शो, लेखक और शायर आलोक यादव से यूनुस खान की बातचीत, संपादक सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत कल दोपहर 3:00 प्रसारित होगा। नाट्य तरंग में कल दोपहर 3:30 पर सुनिएगा नाटक स्वप्न वासव दत्ता, इसका भाग पहला प्रसारित होगा। महाकवि भास के संस्कृत नाटक का रेडियो रूपांतरण, रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। कल दोपहर बाद 4:00 बॉम्बे टॉकीज में आप सुनेंगे गायिका पूर्णिमा यानी सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग पहला, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। छाया गीत का पुनः प्रसारण कल संध्या 5:00 और 5:30 पर सुनिएगा तराने नए पुराने। कल संध्या 7:00 विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रसारित होगा, इसमें निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। जिज्ञासा का प्रसारण समय कल संध्या 7:45 और कल रात्रि 8:00 हवा महल में सुनो कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी भाग एक, वाचन शेफाली कपूर का और प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। कल रात्रि 10:00 छाया गीत में आलेख और स्वर होगा यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। जरोखा में अभी आपने हमारी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुना। और अब संध्या रंजन।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था हम दोनों। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई थी जयदेव ने।

आशा भोसले की आवाज थी और फिल्म का नाम था आंगन। इस गीत रचना को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और धुन बनाई थी रोशन ने। इसके साथ ही आज का संध्या रंजन कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: आजकल इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीत की श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। उदाहरणों सहित इसे प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। आमिर खान की गायकी में चैनदारी और विलंबित बढ़त का मौलिक रूप अत्यंत लुभावना है। ख्याल चाहे विलंबित हो या द्रुत, चिंतन का क्रम व चैनदारी बराबर बनी रहती थी। इसी विशेषता ने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया। आमिर खान साहब को यह प्रेरणा जहां बहरे अब्दुल वहीद खान से मिली, वहीं कूट तानों व मेरुखंड की प्रेरणा भिंडी बाजार वाले अमान अली खान साहब अमर से प्राप्त हुई। देवास के प्रोफेसर अमानत खान साहब तान कहते कहते सहसा एक स्वर पर ठहर के पुनः तान कहने लग जाते थे। यह उनकी अद्वितीय विशेषता थी। यह अंग आमिर खान साहब को बहुत ही पसंद आया। उन्होंने देवास के रजब अली खान के कूट तानों के साथ अवरोही के तानों के साथ गायकी के अनेक अंग आत्मसात किए। जरब और जवारी बहरे अब्दुल वहीद खान की उन्हें पसंद आई। साथ में छूट कह जाना आमिर खान साहब को बहुत भाया। आमिर खान साहब बचपन में उस्ताद बाबू खान साहब बीनकार के साथ हमारे ग्रैंडफादर गोस्वामी श्री कृष्ण राय जी महाराज बच्चू बाबा के यहाँ आया करते थे। यहाँ उनकी सीट थी, इसलिए उन्होंने वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र गोसाई जी के नाम पर एक बंदिश भी बनाई, जिसमें मध्यलय में ख्याल का अंदाज मालूम होता है। तो अब मैं वो बंदिश आपको गाकर सुना रहा हूँ।

केवल गायक होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु अच्छे रचनाकार होने की आवश्यकता भी है। साथ साथ में हर अंग को गायन में यथोचित स्थान देना चाहिए। पहले गुरुजन शिष्य की साधना और उसकी गायकी के हर छोर हर पहलू पर ध्यान देते थे। गायकी के साथ साथ उसे बंदिशों को कहने का अंदाज सिखाते थे, बंदिश कैसे बनाई जाए इसकी शिक्षा देते थे। इन सब बातों के लिए पेशेंस चाहिए। उस्ताद अमीर खान साहब बहुत अच्छे रचनाकार थे। वे सुररंग तखल्लुस मुद्रा या उपनाम से गाते थे। उनकी एक बड़ी ही सुंदर रचना जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ उनकी पत्नी का इसमें योगदान लिए हुए है, तो प्रस्तुत है राग यमन कल्याण में वो बंदिश जो मैं आपको गाकर सुना रहा हूँ, जिसमें गायकी के अनेक अंग हैं, जैसे बल, पेंच, गमकतान, जरब, जरब से गमकतान, छूट, फिरत, कंपित, अंदोल और मेरुखंड आदि का उज्ज्वल उदाहरण लिए हुए हैं।

0: संगीत की श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं आप संगीत सरिता कार्यक्रम में सुन रहे थे। इसके प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से मराठी में समाचार सुनेंगे।

0: मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया रात्री 8:30 आकाशवाणी मुंबईच्या राष्ट्रीय बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर. अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला.
2: ये आवाज थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की. फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने. इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने. बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर. सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं. बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
2: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम आपकी कसम। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन राहुल देव बर्मन की है।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहदी अली खान का चुना है। इसे आवाज मोहम्मद रफी ने दी है और फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है नया रास्ता, आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार हैं साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है एन दत्ता ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती,
3: विविध भारती देश का रेडियो।
4: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टैली।
5: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
6: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क।
3: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
7: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया, और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
0: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान
3: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
8: आज के फनकार।
0: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
8: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
3: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
0: जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

इस अंतराल के बाद फौजी साथियों जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज फिल्म आरजू के लिए। शब्द हसरत जयपुरी के हैं और तर्ज शंकर जयकिशन की है।

अगला गीत फिल्म का नाम है आए दिन बाहर के। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया।

जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश राजेश रोशन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम आपके दीवाने।

0: अनमोल यादें। अनमोल यादें। नमस्कार श्रोताओं, अनमोल यादें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी का। राजीव जी नमस्कार।
1: नमस्कार, और आशा है कि आज भी जो मैं गाने लेके आ रहा हूँ वो आपको बहुत पसंद आएंगे श्रोताओं।
0: तो आज ये सिलसिला जो हम शुरू करेंगे अनमोल यादों का, वो किस गीत से शुरू होगा?
1: देखिये 1973 में एक राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म आई थी।
0: हाँ,
1: उस वक्त कॉमेडी का दौर था नहीं
0: जी,
1: गिनी चुनी कॉमेडीज उस वक्त थोड़ी बहुत चलती थी।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, लेकिन इसका

0: जबरदस्त म्यूजिक जो था उषा
1: हाँ,
0: खन्ना जी का,
1: जी जी
0: और उनकी ये पहली फिल्म थी योगेश जो लिरिसिस्ट थे उनके साथ। इसमें तीन किशोर कुमार और आशा भोसले के ड्यूएट्स थे,
1: अच्छा,
0: और एक रफी साहब का सोलो था।
1: हाँ, हाँ,
0: और चारों गाने इतने पावरफुल, इतने मधुर थे, और उसमें से जो दो गाने थे किशोर और आशा जी के, जीवन है एक सपना,
1: हाँ,
0: और दो दिल मिले गुलो गूंचे खिले,
1: जी जी जी,
0: ये पॉपुलर हुए थे
1: बिल्कुल।
0: और रफी साहब का दिन है ये बाहर के तो आज भी अमर माना जाता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन जो तीसरा गाना था किशोर और आशा का ड्यूएट,
1: हाँ,
0: वो थोड़ा बहुत कम चला, उसी को हम अनमोल तरह से याद करते हैं,
1: जी,
0: मेरे प्यासे मन की बहार।
1: चलिए सुनते हैं 1973 की फिल्म हनीमून का ये अनमोल गाना।
2: मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम

0: जो आप हमें सुनवाएंगे।
1: जी हाँ, मैं एक ऐसे गाने की तरफ जा रहा हूँ, ऐसी फिल्म में जो गुलजार साहब की पहली फिल्म थी एज डायरेक्टर, और अच्छा। बहुत ही तगड़ी फिल्म थी, मेरे अपने।
0: मेरे अपने, हाँ,
1: दो
0: हाँ।
1: गैंग्स की कहानी थी और एक विधवा जो मीना कुमारी जो रोल कर रही थी,
0: हाँ, हाँ।
1: और उसी में एक गाना ऐसा था जो फिल्म में नहीं था, और मैं इसके लिए कह रहा हूँ शायद वो डीवीडीज वगैरह पे हो भी सकता है। मैंने ये फिल्म 3 बार अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिटीज में, शहरों में देखी।
0: अच्छा।
1: और तीनों बार ये गाना नहीं था।
0: अच्छा।
1: मीना कुमारी जी के मेमोरी में HMV ने एक 4 कैसेट का एल्बम निकाला था।
0: अच्छा।
1: जिसमें पहली बार मैंने इस गाने को सुना।
0: हुँ।
1: और तब से मैं इस गाने का भक्त हूँ।
0: ओहो।
1: अच्छा। तो गुलजार साहब ने चांद को लेके काफी सारे गाने लिखे, और उन्होंने मुझे एक बार ये भी कहा कि दौर के हिसाब से मैं गाने लिखता हूँ। जब चांद पे आदमी पहुंचा तो चांद के बारे में जिस तरह उनके गीतों में वो इस्तेमाल करते थे, वो रूप भी बदल गया।
0: जी।
1: जैसे उन्होंने एक गाना लिखा है साथिया में, चांद के पार जो सड़क जाती है।
0: हाँ।
1: तो ये जो एक गाना है चांद के बारे में,
0: जी जी,
1: ये बड़ा ही अलग तरह का गाना है। लता जी ने इसे गाया है, सलील चौधरी साहब का म्यूजिक है।
0: रोज अकेली आए,
1: रोज अकेली आए, रोज अकेली जाए, चांद कटोरन लिया भिकारन रात, मतलब कितना अनोखा अंदाज।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए सुनते हैं।

0: मेरे अपने फिल्म का ये जो निराला सा गाना है लता जी की आवाज में हमने सुना। और आज के एपिसोड की अंतिम याद किस गीत की है?
1: एक बहुत छोटी फिल्म है, नाग मंदिर।
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के स्ट्रगलिंग फेस की ये फिल्म है, 1965 की।
0: 1965 की, हाँ हाँ।
1: तो इसके सारे गाने लगभग असद भोपाली साहब ने लिखे थे।
0: हाँ,
1: जो उनके पहले फेवरेट थे।
0: जी जी जी,
1: उनका तब जो आनंद

0: बख्शी के साथ उनकी मुलाकात
1: नहीं हुई थी,
0: नहीं हुई थी।
1: हाँ,
0: उस दौर का ये गाना है
1: जी।
0: महेंद्र कपूर का एक वर्षन है और उसका एक दूसरा वर्षन लता जी ने गाया है।
1: जी जी,
0: आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर का ये गाना जो बहुत ही हॉन्टिंग गाना है, मेरे सनम।
1: आइए सुनते हैं।

0: 1965 की फिल्म नाग मंदिर का ये गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और इसी के साथ आज का अनमोल यादें कार्यक्रम का ये एपिसोड यहाँ संपन्न होता है। श्रोताओं से विदा लेते हैं। नमस्कार श्रोताओं।
1: नमस्कार। अपना ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।
0: अनमोल यादें। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। संपादन सहयोग रीमा जोशी। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अनमोल यादें।

0: चाय बना लीजिएगा। खैर चाय बनाने में क्या है, कोई कठिन काम है क्या चाय बनाना? चुटकी बजाते बनती है चाय। ये देखो, ये किया गैस ऑन और ये चढ़ाया उस पर पानी और ये डाला इसमें दूध और ये डाली इसमें शक्कर। शक्कर शक्कर शक्कर शक्कर किधर है भाई? अरे यार, ये शक्कर क्यों नहीं मिल रही? हाँ, ये है ना शक्कर का डिब्बा। अरे नहीं यार, ये तो नमक है नमक। ओफो, ये शक्कर कहाँ रख दी इस मालती ने? शक्कर ही नहीं मिल रही, अब क्या करूं? अरे बाप रे, ये चाय तो उफरी जा रही, मेरी तो उंगली ही चल गई।
1: पापा, पापा मेरा नाश्ता बना।
0: बेटे तुम्हारा नाश्ता?
1: हाँ पापा, मेरा नाश्ता और मेरा लंच बॉक्स तैयार किया आपने?
0: नहीं बेटी, अभी तो तैयार नहीं किया।
1: ओ गॉड, पापा फिर मैं क्या खाकर जाऊंगी और स्कूल क्या लेके जाऊंगी मैं? हाँ
0: चिंता मत करो तुम, मैं अभी कुछ करता हूँ।
2: यही रे जो लगा के नचे रे।
0: अरे वाह, लो तुम्हारी मम्मी आ गई, अब वो झटपट तुम्हारा नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार कर देगी।
2: हेलो डार्लिंग।
1: मम्मी मम्मी, आपको पता है पापा ने अभी तक मेरा नाश्ता भी तैयार नहीं किया।
0: मालती, अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं भाई कि निक्की क्या खाती है और क्या ले जाती है, अब तुम ही देखो।
2: सॉरी डार्लिंग, देख रहे हो मैं अभी जॉगिंग से लौटी हूँ और अब मुझे जिम के लिए निकलना है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। प्लीज तुम ही नाश्ता बना दो ना सब कुछ। ओके बाय डार्लिंग, बाय बाय।
0: अरे मालती, अरे सुनो, अरे रुको तो यार प्लीज। ओफ, चली गई, अब मैं क्या करूं? अरे यार, मुझे तो किचन का काखा गा घा भी नहीं पता यार।
1: पापा।
0: अरे क्या है?
1: नाश्ता।
0: अब चुप भी करो तुम।
1: लेकिन पापा मेरा लंच बॉक्स।
0: अच्छा ठीक है, चलो बेटी मैं तुम्हें बाजार से लंच के लिए कुछ खरीद देता हूँ, चलो।
1: बाजार? लेकिन पापा बाजार तो अभी खुला भी नहीं होगा।
0: अरे तुझे इससे क्या, तू चुप कर और चल मेरे साथ।
2: हाय डार्लिंग, मैं कैसे दिख रही हूँ?
0: मालती, ये तुम्हारे लंबे बालों को क्या हो गया?
2: लंबे बाल? लंबे बाल आजकल कौन रखता है डार्लिंग? मिसेस रॉबर्ट, मिसेस चड्ढा, सभी के बाल खटे हुए हैं। मैंने भी बालों को खटवा

0: दिखती हूँ मैं, बताओ ना।
1: वैसे तो ठीक दिख रही हो, लेकिन ये बाल।
0: ओहो, मैं तुम्हें ये बल देना तो भूल ही जा रही थी, इनका पेमेंट कर देना डार्लिंग।
1: बिल? अरे काहे का बिल?
0: लो, खुद ही देख लो।
1: ए? ब्यूटी पार्लर के 1,000, जिम के 3,000, जॉगिंग सूट 1,500 का, और ये क्या है? होम फेशियल, फेस मास्क, लिपस्टिक, रूस, ये इन सब के 2,500? मालती मालती ये सब क्या है? अरे मालती, तुम तो मेरा दिवाला निकाल दोगी, हैं? अरे ये क्या कर रही हो तुम?
0: कुछ भी तो नहीं डार्लिंग, मैं तो सिर्फ स्लिम ट्रिम हो रही हूँ, जैसा कि तुम चाहते हो।
2: पापा पापा पापा, मुझे अपने स्कूल की फीस जमा करनी है, और हाँ, और कोचिंग सेंटर की भी फीस जमा करनी है, कॉपियाँ भी खरीदनी है, और
1: अरे निक्की बेटे, अब बस भी करो। मे आई कम इन सर? सर आपने मुझे बुलाया?
3: मिस्टर विनोद, आपके ऑफिस आने का ये टाइम है? पिछले कई दिनों से आप रोज देर से दफ्तर आते हैं।
1: सर क्या है कि बेटी को तैयार करके स्कूल पहुंचाने में देर हो जाती है सर।
3: मुझे आपका कोई बहाना नहीं सुनना है, आप तो महिलाओं वाले बहाने सुना रहे हैं। दफ्तर टाइम पर नहीं आ सकते हैं तो छुट्टी ले लीजिए, या फिर नौकरी छोड़कर घर संभालिए।
1: सर
3: सुनिए, अगर कल से आप लेट हुए तो समझिए कि आपकी नौकरी गई, अंडरस्टैंड?
1: यस सर।
3: आप खड़े क्यों हैं? जाइए जाइए, अपना काम कीजिए।
1: सर सॉरी सर। अरे अरे, ये भीतर से किसकी आवाज आ रही है? ये मालती किससे बातें कर रही है? हैं? दरवाजा भी उड़का हुआ है, जरा ध्यान से सुनो, क्या चल रहा है ये मेरे घर के भीतर? हैं? अरे अरे, ये तो अमित है, ये मेरे घर में इस वक्त क्या कर रहा है? क्या बातें कर रहे होंगे ये लोग, जरा सुनो तो।
0: चलिए हटिए अमित जी, आप बड़े वो हैं।
4: नहीं मालती, मैं सच कह रहा हूं, तुम क्यों विरोध के पल्ले बंधी हुई हो? कहां तुम इतनी खूबसूरत, और कहां वो लंगूर? तुम उसे छोड़कर मुझे अपना लो, रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें।
0: सच?
4: बिल्कुल सच, 100% सच। तो मैं तुम्हारी मंजूरी समझूं?
1: ये क्या देगी मंजूरी तुझे? मंजूरी तो मैं दूंगा तुझे, मेरी बीवी को अपनी रानी बनाएगा है? तेरी हड्डी पसली एक ना कर दूं? बेशर्म, अपने दोस्त की बीवी पर डोरे डालता है।
4: इसमें बेशर्मी कैसी? तुमने हम लोगों को दिखाने के लिए ही तो मालती भाभी को ब्यूटी क्वीन बनाया है, फिर देखने दो ना यार।
1: यार यार, किसको कह रहा है तू? अरे तू तो मेरा दुश्मन है दुश्मन, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
5: अरे रे विनोद जी, ये आप क्या कह रहे हैं?
1: रीमा भाभी, आप किचन में क्यों छुपी हुई थी?
5: ताकि आप मेरे पति अमित और मालती भाभी को कहीं सचमुच ना गलत समझ बैठे।
1: क्या क्या मतलब?
5: मतलब ये कि ये जो सारा नाटक आप देख रहे हैं, आपकी आंखें खोलने के लिए रचा गया था। मालती तो इसके लिए तैयार भी नहीं थी, लेकिन मैंने ही उसे समझा बुझाकर तैयार किया। अब आपको समझ में आया विनोद भाई कि बीवी ब्यूटी क्वीन बनने चल दे तो घर परिवार की क्या दशा होती है?
1: हाँ भाभी, अच्छी तरह समझ में आ गया। क्या अब भी समझ में नहीं आएगा? अरे हजारों का चूना लग चुका है मुझे, और आज तो बीवी से भी हाथ धोने की स्थिति आ गई थी। अरे इस ब्यूटी क्वीन बीवी से तो मेरी पहले जैसी बीवी ही अच्छी।
0: डार्लिंग, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गई कि कल मैंने कॉस्मेटिक सर्जन से अपॉइंटमेंट ले रखा है, और उसकी फीस
1: क्या?

बीवी ब्यूटी क्वीन। अभी आप सुन रहे थे शरद सिंह की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे अजीमुद्दीन। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: देखिए कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मीट ब्रदर्स अनजान के संगीत निर्देशन में कुमार का लिखा गीत, आवाजें मीट ब्रदर्स अनजान और अरिजीत सिंह की, फिल्म का नाम है एक पहेली लीला।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम

0: रणदीप भास्कर, रविंद्र साठी और हर्षदीप कौर। इस गीत को लिखा था विभु वीरेंद्रपुरी ने और धुन बनाई थी मंगेश ने।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

0: देखिए कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द?
2: इन तमाम सवालों से ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है, 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से मराठी में समाचार सुनेंगे।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में MS धोनी फिल्म का गाना। गीतकार मनोज मुंतशिर हैं और धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला STT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
4: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
5: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
6: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
7: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग तीन प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है, शासी परिषद, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
8: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियाँ तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
7: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
9: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
7: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
10: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रात्रि के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, गुलजार साहब की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम लेकिन।

लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था लेकिन। कार्यक्रम का अगला गीत हसन कमाल का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बद्ध किया हुआ, फिल्म का नाम है बंटवारा। गाने वाले कलाकार अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म जुनून का दो गाना। गाने वाले कलाकार अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा। इस गीत को समीर ने लिखा है और तर्ज नदीम श्रवण की है।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

सुरेश वाडेकर की आवाज थी, फिल्म का नाम था सदमा, गीत गुलजार साहब का था और धुन इलैया राजा की थी। लीजिए अब सुनिए समीर का लिखा गीत सोनू निगम की आवाज में। ये फिल्म है संघर्ष और इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

पीनू नको, उजला कपड़ा पीनू नको। तू सदा सबस परी रहे, गोदी हरी भरी रहे।

0: पीनु नक्कु काला कपड़ा पीनु नक्कु मैं कितनी बार बोला ना जी उजला कपड़ा पीनु नक्कु काला कपड़ा पीनु नक्कु उजला कपड़ा पीनु नक्कु।
1: दोस्तों शबाना आजमी हिंदुस्तानी फिल्मी पर्दे की वो अभिनेत्री है जिसने अदाकारी के वो जौहर पेश किए हैं जिन्हें सिर्फ बेमिसाल ही कहा जाएगा। ये बात जग जाहिर है कि वो एक उम्दा शायर कैफिया आजमी और इप्टा की जानी मानी कलाकारा शौकत आजमी की बेटी है, मशहूर सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी की बहन और गीतकार शायर जावेद अख्तर की शरीक हयात है।
2: दिल

दोस्तों 1972 के आसपास FTII से शबाना आजमी ग्रेजुएट हुई और अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए ही एक्टिंग की दुनिया में जलवागर हुई। अब्बास साहब की एक फिल्म फासला में उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली भूमिका की, हालांकि ब्लेज फिल्म्स की पेशकश अंकुर पहले रिलीज हुई थी। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं शबाना आजमी द्वारा अभिनीत एक फिल्म अर्थ का ये बड़ा ही खूबसूरत गाना।

दोस्तों शबाना भी उस दौर को बिलोंग करती हैं जब पैरेलल सिनेमा ने बुद्धिजीवियों के बीच पैठ बना ली थी। अगुवाई कर रहे थे द ग्रेट सत्यजीत राय, श्याम बेनेगल, महेश कौल, गिरीश कर्नाड, शंकर नाग जैसे और भी कई। इनके द्वारा बनाई गई फिल्में आर्ट फिल्में कहलाती थीं, जो क्लास के लिए बनती थीं, जो कि आधारित होती थी मास पर ही। उनके विषय मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देते थे। ऐसी ही एक फिल्म थी निशांत। इसमें भी बड़ी ही सशक्त भूमिका में थी शबाना आजमी।

दोस्तों, शबाना आजमी ने कई नामचीन फिल्मकारों के साथ काम किया है। उनमें से प्रमुख हैं श्याम बेनेगल की निशांत, जुनून, मंडी, सुष्मन और अंतरनाद। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया। सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी, मृणाल सेन के साथ खंडर, जेनेसिस और एक दिन अचानक, ये फिल्में उन्होंने की। सईद मिर्जा की फिल्म उन्होंने की थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। गौतम घोष की पार उन्होंने की थी। सही परांजपे की स्पर्श और दिशा, अपर्णा सेन की पिकनिक और सती, महेश भट्ट की अर्थ उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म अवतार के इस गाने के साथ।

दोस्तों, शबाना आज़मी द्वारा अभिनीत फिल्मों की एक फहरिस्त पर हम जब नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि किस किस्म की फिल्में उन्होंने की हैं। 1988 में मैडम सोजार्ट्स का, 1992 में आई थी सिटी ऑफ जॉय, 1993 में इन कस्टडी, 1993 में ही एक और फिल्म आई थी उनकी सन ऑफ द पिंक पैंथर, 1996 में फायर, 1997 में साज,

1998 में अर्थ, 1999 में गॉड मदर, 2002 में उनकी फिल्म आई थी मकड़ी, तहजीब आई थी 2003 में, 2004 में मौनी रागाज, 2005 में 15th पार्क एवेन्यू, इसी साल यानी 2005 में आई थी वाटर बॉर्न, 2006 में उमराव जान, 2007 में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड,

इसी साल यानी 2007 में लायंस ऑफ द पंजाब प्रेजेंट्स, 2008 में उनकी फिल्म आई थी सॉरी भाई, और 2010 में इट्स वंडरफुल आफ्टर लाइफ। शबाना आजमी मटरू की बिजली का मंडोला इस फिल्म में भी नजर आई थी। दोस्तों, शबाना आजमी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री शबाना आजमी पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत लग जागने। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत

0: छाया गीत सुनने वालों को अनुराधा उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

ऐसा होता है ना अक्सर, आपने कभी सोचा नहीं होता, कभी चाहा भी नहीं होता, और चलते चलते जीवन के किसी मोड़ पर एक शख्स कभी आपकी जिंदगी में शामिल हो जाता है। वो जो था बिल्कुल अनजान, बिल्कुल अजनबी, और फिर पता ही नहीं चलता कि कब वो अजनबी हमारी हर दुआ का हिस्सा बन जाता है। हमें कहाँ पता होता है ये जाना पहचाना सा अपना सा अजनबी हमारी जिंदगी में हौले हौले से दस्तक दे रहा है।

प्यार की शुरुआत किसी बड़े इजहार से नहीं होती, कभी एक नजर से होती है, कभी एक मुस्कान से, और कभी उस खामोशी से जिसमें दो दिल बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। दिल की गहराइयों को समझने के लिए लफ्जों की जरूरत कहाँ, आंखें शब्दों से कहीं ज्यादा बयां करती हैं। बस वक्त लगता है समझने समझाने में।

और फिर उस खामोश इजहार के बाद की वो पहली मुलाकात भी कितनी खास होती है ना। दरअसल उस मुलाकात का इंतजार उससे भी ज्यादा खास। दिल न जाने कितने सपने सजाता है उस पहली मुलाकात के पहले, न जाने कितनी ही मुलाकातें ख्यालों में सोते जागते हो जाती हैं। उसकी आंखों का वो पहला एहसास, उसकी मुस्कान की वो हल्की सी चमक, दिल कहीं संभाल कर रख लेता है। बातें छोटी होती हैं मगर इंतजार लंबा होता चला जाता है। एक एक पल, एक एक दिन, सदियों

कैसे हो से शुरू हुई बातचीत कब आज मिले क्यों नहीं तक पहुंच जाती है, और इस दिल को पता ही नहीं चलता कि कब हाल पूछने से हक जताने तक का सफर तय हो गया है। उसके होने से मौसम सुहाने लगने लगते हैं, उसकी आवाज सुनकर दिन थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है, और उसकी खामोशी भी दिल के तार छेड़ देती है।

उसकी मौजूदगी ज़रूरी लगने लगती है, उसकी खुशी अपनी खुशी लगती है, उसकी उदासी दिल को छू जाती है और उसके बिना गुजरा हुआ दिन जाने क्यों थोड़ा अधूरा सा लगता है। मोहब्बत शायद यही है। फिर एक दिन दिल पूछ बैठता है, क्या

आसपास की दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन आपके लिए जैसे उस पल में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, आप और वो। एक लंबी सड़क, बारिश के कुछ बूंदे और साथ वो इंसान। घड़ी की सुइयां कब आगे बढ़ गईं खबर नहीं होती, बस उस एक मुस्कान में जैसे पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी दुनिया सिमट आती है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही तो है, किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने से पहले उसके साथ बिताए एक छोटे से पल को पूरी जिंदगी याद रखना।

0: आज का छाया गीत संपन्न करने के लिए अनुराधा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: विकटर मरे